कोशिश नहीं कर रहे, कोशिशें उनकी बहुत कम थी। तो इमाम सैयद सज्जाद अलैहिस्सलाम ने भी जो रास्ता इंतखाब किया सख्त रास्ता था, और हक का रास्ता हमेशा सख्त हुआ करता है। अब इसकी वजाहत नहीं है अज़ीज़ों, लेकिन ये बात अपने पास रख लें, अगर ज़रूरत पड़ी तो इंशाअल्लाह कभी इसके लिए

0: नहीं मालूम कि इब्ने अब्बास ने तुम्हें हमारे साथ क्यों भेजा है। शायद वो तुम जैसे पागल से अपनी जान छुड़ाना चाहते थे। नमाज का वक्त भी हो गया।
1: नमाज।

0: चलो वक्त हो गया है।
1: मोहम्मद
2: जी बाबा फरमाइए।
1: जो हाल तुम्हारा हुआ है हो सकता है कि इसकी वजह से तुम सब काम खराब कर दो। एहतियात करो और मस्जिद में जाने से बचो। याद रखो कि इब्ने अब्बास ने क्या कहा था, सारे काम उसी के हुक्म के मुताबिक होना चाहिए।
2: ठीक है बाबा, आप मुतमईन रहिए, मैं ऐसे ही करूंगा।
3: लो पकड़ो, मैं चला।
4: السلام عليكم.

0: करने आए थे तो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था, उनकी जिरह पे मेरी निगाह पड़ी थी।
1: कहा था ना, मैंने कहा कि मुमकिन नहीं है, काफी है, बहुत हो चुका, इससे आगे ना बढ़ो। उन्हें साजिश का पता चल गया है, यकीनन उन्हें किसी ने आगाह कर दिया है।
2: मुमकिन नहीं है हमारे दरमियान कोई खयानत करे। हाँ अलबत्ता,
1: अपनी जबान को लगाम दो। ये तौहीन जो तुमने मेरी की है, इसकी शिकायत मैं अमीर से करूंगा।
0: उससे बोलो गर्दन का निशाना ले।
1: ये मुमकिन ही नहीं, इतने फासले से किसी की गर्दन का निशाना नहीं बनाया जा सकता। हाँ बिल्कुल,
0: क्यों नहीं हो सकता, वो कर सकता है, मैंने खुद देखा है, वो एक माहिर तीरंदाज है।
2: वो एक जुनूनी इंसान है जो तीर कमान के अलावा कुछ नहीं जानता है।
0: जाओ बोलो गर्दन, उससे बोलो गर्दन का निशाना ले, जरा से गर्दन नहीं छुपती है।

0: मोहम्मद तुम्हारे पीछे। ये क्या हो रहा है? अब मोहम्मद को बचाओ, अब मोहम्मद को बचाओ, जाओ अब मोहम्मद को बचाओ, मोहम्मद को बचाओ।
1: खवारिज है ये लोग, खवारिज।
0: देखो तुमने उसे, खवारिज थे ये लोग, खवारिज।
2: गारिब को मार दिया।
3: हसन इब्न अली का क्या हुआ?
2: वो मामूली से जख्मी हुए हैं। जैसे ही ज़ारिब ने तीर चलाया, हसन इब्न अली के एक महाफिज ने इसको सीढ़ियों से नीचे फेंक दिया और फिर लोगों ने उसे तलवार के वार से कत्ल कर दिया। लगता है हसन इब्न अली की दोस्तों को पहले से इत्तला मिल गई थी। हमारे दरमियान कोई खाइन ज़रूर मौजूद है।
4: मैंने कहा था ना कि ये काम मुमकिन नहीं है, नहीं कहा था?
3: हमें एक दूसरे से अलग हो जाना चाहिए, ये जगह खतरनाक है। हम में से हर एक को अलग अलग जगह पर छुप जाना चाहिए और एक दूसरे को भी अपने छुपने की जगह का ना बताएं। जब तक हकीकत वाजह नहीं हो जाती, सब्र से काम लें। चलो।
4: हमारा क्या होगा? मैं तुम्हारी शिकायत अमीर से करूंगा।
3: अगर जिंदा रहे तो शिकायत कर लेना, कोई बात नहीं। मैं भी तुम्हारी शिकायत करूंगा और उस वक्त अमीर फैसला करेंगे।
5: शम्स इब्न कैस,
1: शम्स
5: क्या हो गया है जो इतना चिल्ला रहे हो?
6: इब्न ज़ैद रोशन, अब आप मोहम्मद की जान के दुश्मन हो गए हैं।
5: क्या
6: मारने वाले को दरवाजे पर ही मार दिया गया?
5: अब आप मोहम्मद का क्या हाल है?
6: कहते हैं कि ज्यादा जख्म नहीं आया, खतरा टल चुका है।
5: ठीक है, अब अबा मोहम्मद और उनके साथियों को पता चलेगा कि ये सिर्फ खवारिज नहीं है जो ऐसा काम करते हैं। यही चीज हमारे दरमियान फितने का खात्मा करेगी।
6: लेकिन लोग ये बात नहीं मानते, बस खवारिज खवारिज की रट लगाए हुए हैं और हमारे घरों की तरफ बढ़ रहे हैं। इतना नाराज हैं कि लगता है कि कोई

0: इब्ने दिलजोशन, सोचो क्या करें।
1: शैम, पता है क्या हुआ?
2: हाँ जानता हूँ, शोर ना करो। अब तुम अपने बेटी के घर जाओ और उसे बता दो कि हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है।
0: यकीन नहीं करेगी।
2: यकीन करना चाहिए, उसे इत्मीनान दिलाओ तुम बाप हो। कहो कि लोग खवारिज के नाम पर फितना फैला रहे हैं, अबा मोहम्मद से कहकर लोगों को रोकें।
0: मुझे मालूम है कि फायदा नहीं है।
2: बेफायदा नहीं है, जाओ। अबा मोहम्मद के घर में कम से कम तुम्हारी जान तो महफूज है। तुम भी उसके साथ जाओ, जाओ तुम भी उसके साथ।
1: तुम क्या करोगे?
2: मेरी फिक्र ना करो, मुझे महफूज जगह मिल जाएगी।

0: कौन हो सकता है? नहीं मालूम, यकीनन इब्ने अब्बास के मामूर हैं जो हमें गिरफ्तार करने आए। हो सकता है मुआविया के जासूस हों जो वापस हो गए हों। मेरा नहीं ख्याल, हमें यहाँ से भागना चाहिए। कहाँ भागें, फरार का कोई रास्ता नहीं है। हमें सवारी और सफ़र का इंतज़ाम पहले से करना चाहिए था। ऐ काश उन शामी जासूसों के फरेब में ना आते और ऐसी हिमाकत ना करते। खवारिज की दुश्मनी ने हमें मजबूर किया। ठहरो, पहले पूछ तो लें, शायद कोई पड़ोसी हो, शायद शायद कोई कासिद शाम से आया हो।
1: आका क्या करूं?
0: दरवाजा खोलने से पहले पूछो कि कौन है। अगर हमारा पूछे तो कह देना घर पे नहीं है। कह दो रात ही को शहर से निकल चुके हैं। जाओ।
2: कौन है?
3: खोलो, अमर इब्ने हुरैस से काम है।
2: नहीं है, मुसाफरत पे गए हैं।
3: जानता हूं तुम झूठ बोल रहे हो। हमसे कहो शिमरे जिल रोशन एक जरूरी काम से आया है, उससे मिलना है।
4: शिमर अपने जिल
0: शिमर यहां क्या कर रहा है? मुझे क्या मालूम, हमसे क्या चाहता है? कह दो नहीं है।
2: नहीं है।
3: हम से कहोगे अगर नहीं खोलोगे तो इब्ने अब्बास के साथ हसन इब्ने अली के साथियों को लेके फिर आऊंगा।
0: कोई चारा नहीं है, खोल देना चाहिए। वो खतरनाक आदमी है, जो कहता है वो करके रहता है। दरवाजा खोल दो।
3: घर पे नहीं हो? नाअहल रूबा सिफत, हसन इब्ने अली को कत्ल करना चाहते हो और उसका गुनाह मेरे सर डालते हो।
0: इसमें हमारा कोई हाथ नहीं था, हमसे कोई मतलब नहीं था।
3: झूठ बोलते हो। हसन इब्ने अली का इस शहर में मेरे और तुम्हारे सिवा कोई दुश्मन नहीं। ये मेरा काम तो नहीं था, यकीन तुम लोगों का काम है। कहां है तुम्हारे हमदस्त? इसी घर में छुपा रखा है या फरार करवा दिया है?
0: मुमकिन है मुआविया के जासूसों का काम हो, वो इस शहर में बहुत ज्यादा है।
3: ये कैसे कह रहे हो कि मुमकिन है मुआविया के जासूसों का काम है? अब मैं समझ गया हूं कि तुम लोगों ने पिसर हिंदा के

0: जासूसों के साथ मिलकर एक नया बलवा खड़ा कर दिया इस उम्मीद पे कि हमें और हसन इब्ने अली को एक साथ रास्ते से हटा दें।
1: झूठ है, झूठ है,
0: झूठ। इतना तुम डरे हो कि अपना घर भी नहीं खोल रहे हो। वल्लाह ये हक है कि तुम दोनों को इस सलवार से मार डालो।
1: बस भी करो पिसरे जिल जोशन, बैठो कुछ सांस ले लो, हम अपनी तमाम मुश्किलात को बैठ के हल कर सकते हैं।
0: ना मुराद, कूफे में बलवा खड़ा कर दिया है, लोग चिल्ला रहे हैं और तुम लोगों की बेवकूफी की वजह से लोग चाहते हैं कि मुझे कत्ल कर डालें और तुम लोग कहते हो कि बैठो बात करें।
1: भूल जाएंगे शेमर, एक दो घंटे बाद जज्बात कम हो जाएंगे, गुस्सा ठंडा हो जाएगा। कूफे वालों को खूब पहचानते हो। इसके अलावा इब्ने अब्बास और अबा मोहम्मद के साथी शहर में बलवा नहीं होने देंगे। आओ पिसरे जिल जोशन, सिर्फ तुम खतरे में नहीं हो, हम सब इस मुसीबत में गिरफ्तार हैं। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है, हमें अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचना चाहिए। होजर तुम जाओ और दूर से हालात का जायजा लो और कूफे के हालात की हमें खबर दो। हमारे लिए खाना लगा दो, कुछ देर आराम करना चाहते हैं। आओ अंदर आओ।
2: मैं जानता था कि वो कबूल नहीं करेगी।
3: थोड़ा सा इंतजार करो।
2: जौदा मेरी बेटी,
4: बताओ क्यों इस घर में कदम रखा?
2: देखा बाहर आग लगी हुई है।
4: जानती हूँ, ये वही आग है जो तुमने भड़काई है और अब अपना दामन खुद पकड़े बैठे हो।
3: हमारा इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं है।
4: कोई यकीन नहीं करता।
2: तुम तो यकीन करो, तुम तो मेरी बेटी हो।
4: हाँ, उसकी बेटी जिसके बाप ने अपनी कमर बांध ली है रसूल खुदा के वसी और उनके जानशीन के कत्ल के लिए। अगर मैं हसन इब्ने अली की बीवी नहीं होती तब भी तुमसे और तुम्हारे साथियों से इतनी ही नफरत करती।
3: हमारी बात सुनो बेटी, तुम्हारा बाप सच कह रहा है, इस वाकये से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है।
2: जौदा मेरी बेटी,
4: जब अली मुर्तजा इब्ने मुलजिम की तलवार से बिस्तर मर्ग पर आ गए और मैंने रोते हुए तुम लोगों से पूछा कि सच क्या है, क्या ये तुम लोगों की साजिश थी? तुम लोगों ने अली के कत्ल के लिए इब्ने मुलजिम के हाथ में तलवार दी थी तो तुम दोनों ने इनकार किया और कहा इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन बाद में सब कुछ मालूम हो गया, हकीकत रोशन हो गई और मैं किसी के घर शर्मिंदा सर झुकाए रह गई कि मेरा बाप उसके बाप के खातिल का हिमायती था। और इससे अफसोसनाक ये है कि हसन इब्ने अली ने किसी से कुछ नहीं कहा, हरगिज़ मेरे बाप का नाम तक ना लिया, कभी अशद इब्ने कैस की बेटी समझकर निगाह नहीं की, बल्कि मुझ पर पहले से ज़्यादा मेहरबान हो गए। मेहरबान लहजे में मुझे पुकारा, औरों के मुकाबले में एहतराम से मेरा नाम लिया। एक दफ़ा शर्म से मैं उनके चेहरे की तरफ निगाह ना कर सकी तो मुझसे कहा किसी का गुना किसी के नाम नहीं लिखा जाता। मैं समझ गई कि क्या कह रहे हैं, यही दर्द गम मुझे 100 बराबर कर गया। अगर चीखते चिल्लाते मेहरबान न होते, अगर मुझे मेरे बाप के जुर्म में घर से निकाल देते, कसम खुदा की इसका बर्दाश्त करना मेरे लिए आसान होता। ये कैसी सुन्नत है तुम और तुम्हारे साथियों की, हक बात नहीं सुनते, तलवार और जबान तेज किए हुए हो।
2: चलो चले।
3: जोदा हम जा रहे हैं, अगर इंतकाम की आग में जल के मर गए तो जान लेना कि हमें हमारे नाकर्दा गुनाहों की सजा मिली है और तुमने हमें ऐसे गुनाह का मुजरिम करार दिया है कि जिससे हमारी रूहें भी बेखबर हैं।
4: रुक जाओ,
5: थैंक यू।

0: जाओ। हसन इब्ने अली अपने सरदारों को उन लोगों की जानिब रवाना कर चुके हैं ताकि तुम लोगों को कोई नुकसान ना पहुंचाए।
1: मेरी बेटी, सच है कि तूने बेटी होने का हक अदा कर लिया, बहुत अच्छा किया और अपने बाप को शर्मिंदा होने से बचा लिया। तेरे इस एहसान को कभी नहीं भूलूंगा।
0: बेहतर है कि जान लो कि मैंने अबा मोहम्मद से कोई दरख्वास्त नहीं की थी, उन्होंने खुद अपनी तरफ से सरदारों को भेजा है और खुद कहलवाया है कि इस बार खवारिज का हाथ नहीं है।
2: सब जान लें कि अबा मोहम्मद सही और सालिम है और उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा। जख्म मामूली है और जल्द ही ठीक हो जाएगा। लोगों सुनो, मैं क्या कह रहा हूं। मैं हसन इब्ने अली का तुम्हारे लिए पैगाम लाया हूं। इमाम ने फरमाया है कि इस मामले में खवारिज का कोई दखल नहीं है, वो अमान में है। इमाम ने कहा है कि अपने आंख और कान अच्छी तरह खुले रखो, माविया की साजिशों और उसके लुटेरों से होशियार रहो और आपस में इत्तेहाद रखो। अब जाए अपने अपने घरों को और दुश्मनों की साजिशों से होशियार रहे। अब जाए।
3: खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। अब बिल्कुल मुतमईन रहो, अब तुम्हें कोई खतरा नहीं है। इब्ने अब्बास ने अबा मोहम्मद की जानिब से लोगों से कहा कि खवारिज का काम नहीं था, इस वाकये में वो बिल्कुल बेगुनाह थे।
2: लोगों ने क्या कहा?
3: लोग फौरन मुंतशिर हो गए और हर आदमी अपने अपने काम पर चला गया और फितना वहीं थम गया। देखा तुमने,
2: बेवकूफों की तरह काम करते हो। तुम्हारा इस तरह का काम करने से पहले किसी अकलमंद से मशवरा ले लिया करो।
3: कहाँ चल दिए पिसर जोशन? आओ ताकि कुछ मशवरा करें। माजरा अभी खत्म नहीं हुआ, जंग दर पेश है और लश्कर शाम की तरफ चल पड़ा है। इब्ने अब्बास फौज के तदारुक में है, पिसर अबू सुफियान अतराफ व अकनाफ से फौज जमा कर चुका है। ये तमाम उमूर तुम्हारी नजर में मशवरे के मोहताज नहीं? क्यों नहीं?

0: हर क्या कर रहे हो?
1: इंतजार कर रहा हूं सरदार।
0: किस चीज का?
1: एक सवार कूफे से आने वाला है।
0: सवार? मैं तो किसी सवार को नहीं देख रहा।
1: क्यों नहीं? आएगा। कुछ देर पहले मैंने उसे दूर से आते हुए देखा है।
0: कल से जो तुम हमारे साथ चले हो, घबराए हुए दीवानों जैसी हरकतें कर रहे हो, परेशान हो। सारी रात मैं तुम्हें देखता रहा, एक पल के लिए भी आंखें बंद नहीं की। चलते रहे, आसमान की तरफ देखते रहे, और आज सुबह से अतराफ चक्कर लगा रहे हो। बताओ तुम कौन हो? जासूस, गारतगर, या कोई हमला होने वाला है? बल्ला हकीकत नहीं बताई तो अभी कत्ल कर दूंगा।
1: मुझे फुर्सत दो सरदार, फुर्सत। कूफे से एक सवार आने वाला है, उसके आने के बाद तुम्हें हकीकत मालूम हो जाएगी।
0: क्या मतलब? कूफे में क्या होने वाला है?
1: मत पूछो, मैं नहीं बता सकता। सब्र से काम लो।
0: ये कैसा राज है कि तुम जानो और मैं ना जानू? मैं अबा मोहम्मद का सरदार हूं, रावल दस्ते का सालार। सिफीन में अली ये मुर्तजा के साथ था और नहरवान में उनके साथ तलवार चलाई, सैकड़ों काफिरों को इन्हीं हाथों से कत्ल कर डाला और दसियों खवारिज को जहन्नम वासिल किया। तू अजमी मुझसे कहता है कि ऐसा राज जानता है जो मुझे नहीं बताएगा? वल्लाह तू झूठ बोलता है।
1: देखो उधर देखो,
2: अहमद है।
0: कौन अहमद?
1: अहमद बिन हारिस। हाँ ये वही है जिस सवार का मैंने तुमसे कहा था। खुदाया मदद कर।

0: अहमद क्या हुआ?
1: अबा मोहम्मद सालिम है, दुश्मन को कत्ल कर दिया गया है।
2: सरदार अब तुम सब कुछ जान सकते हो।
3: अमर क्या खबर है?
4: अबा मोहम्मद का एक खत आया है।

0: क्या लिखा है?
1: लिखा है, कूफा में तुम्हारे एक जासूस की गर्दन उड़ा दी है।
0: गर्दन उड़ा दी है?
1: हाँ, लेकिन कोई अहम बात नहीं है, वो तुम्हारा जासूस नहीं था, बल्कि वो मुगैरा का जासूस है। दरअसल मुगैरा को गुस्सा आना चाहिए था, अगरचे मुगैरा को कोई गुस्सा नहीं है। सैकड़ों जासूस हैं, एक ना सही, कोई फर्क नहीं पड़ता। जासूस अपना काम करें और वक्त पर खबर दें। खबर कब पहुंचाते हैं कोई पता नहीं। क्यों मुगैरा?
2: क्या बताऊं
0: मुगैरा, तुम्हें अपने जासूसों की कुछ खबर भी है?
2: सच पूछे तो अमीर, मुझे चंद दिनों से इनकी कोई खबर नहीं।
0: ये भी नहीं जानते कि उनमें से एक की गर्दन भी उड़ा दी गई है?
2: नहीं अमीर।
0: खुदा की लानत हो तुझ पर।
1: सब्र करो अमीर, मुगैरा के जासूसों को छोड़ दो। देखो तो सही, हसन इब्ने अली ने क्या लिखा है। लिखा है कि अगर रूबरू चाहते हो तो जान लो कि वो वक्त दूर नहीं है, और मुझे यकीन है कि तुमसे तलवार ही से बात हो सकती है, इसलिए कि तुम आवारा, औबाश, बेवकूफों की तरह अक्ल व खिरत से खाली हो। अजीब खत है
0: इब्ने आस।
1: अमीर,
0: तुम अपनी हद से आगे बढ़ रहे हो।
1: मैंने तो हसन इब्ने अली का खत पढ़ा है।
0: किसकी इजाजत से तूने यह खत पढ़ा है?
1: अमीर, मेरा नाम अमर है, आस का बेटा हूं, तुम्हारा दोस्त और साथी हूं, और जिसने जासूस की गर्दन उड़ाई है और तुम्हें यह खत लिखा है, वो अली का बेटा है।
0: इब्ने आस, कभी कभी समझ नहीं पाता कि तुम्हारा क्या करूं।
3: अमीर, अमीर,
1: मुझसे नाराज क्यों होते हो?
0: ये कोई तुक है जो ऐसा खत तुम सबके सामने पढ़ते हो?
1: हाँ, तुम सच कहते हो, मुझे नहीं पढ़ना चाहिए था। हसन इब्ने अली के खत ने मुझे ऐसा बदहवास कर दिया था कि मैं अपने हवास खो बैठा।
0: उसने मुझे अलल एलान जंग की दावत दी है, क्यों?
1: हम कूफे से बेखबर हैं, हमें जानना चाहिए कि वहां क्या हो रहा है।
0: मुगैरा, तुम और तुम्हारे जासूस।
1: हुक्म दिया जाए उस कासिद को यहां बुलाएं जो ये खत लेकर आया है, शायद उससे कुछ मालूम हो सके।
0: कहां है वो कासिद जिसने ये खत लाया है? यही है अमीर, उसे ले आओ। इस खत से पता चलता है कि हसन ने एक बड़ा लश्कर तैयार कर लिया है और हामियों की बड़ी तादाद उसके साथ है, और नामुमकिन न था।
1: मुमकिन है, मुमकिन है ना भी हो।
0: मुझे डर है कि जो खबर मुझे जासूसों और बलवाइयों के जरिए दी गई है वो झूठ के अलावा कुछ नहीं, और उस वक्त मैं आंख खोलूं जब हसन इब्न अली के तरफदारों के पंजों में घिरा पाऊं। कहां से आए हो?
4: दमिश्क।
0: तुम अहले दमिश्क कूफे से कैसे नामा ला रहे हो?
5: ये वही कासिद है जिसने अमीर का खत कूफा पहुंचाया था।
6: अमीर, मैं खत पहुंचा के वापस आ रहा था कि कैस इबन साद ने मुझसे कहा कि हसन इबन अली का खत अमीरुल मोमिनीन तक पहुंचा दूं। मैंने जवाब दिया, मुझे इस काम की इजाज़त नहीं है। तो कैस ने कहा, कूफियों में से कोई इस खत को शाम पहुंचाने के लिए तैयार नहीं है, और अगर तुम भी कबूल नहीं करोगे तो यह खत दमिश्क तक नहीं पहुँच पाएगा। इसी वजह से मैंने कबूल कर लिया, और अगर ये काम मैंने गलत किया है तो अपने अफराद को हुक्म दें कि मुझे सज़ा दी जाए।
0: تمہارا سفر کا خرچ بھی دیا

0: जी अमीर,
1: कितना दिया?
0: 5 सिक्के।
1: तो फिर सिक्के की कमाई है जो तुमने नामा कबूल किया? नहीं के नामा बेजवाब रह जाएगा। बताओ कूफे की क्या खबर है?
0: जैसे ही कूफे में दाखिल हुआ तो देखा लोगों ने एक शख्स की गर्दन उड़ा दी थी और कह रहे थे माविया का जासूस है जो दमिश्क से आया है।
1: ये बात मुगैरा को बताओ। और क्या खबर है?
0: पहले दिन मैंने देखा कि जमादार शहर की झाड़ू लगा रहे थे और कह रहे थे कि हसन इब्न अली ने इब्न अब्बास को फौज का सपहसालार मुकरर किया है और हुक्म दिया है कि फौज की तश्कील नौ की जाए और लोगों से कहा है कि जिहाद के लिए तैयार हो जाएं।
1: इब्ने अब्बास क्यों?
2: इस इंतखाब में ज्यादा चालाकी और होशियारी है। उबैदुल्लाह के इंतखाब में हर तरह की दुश्मनी और उसके सरदारों की नाफरमानी दामनगीर है। उबैदुल्लाह बनी हाशिम से है और अबा मोहम्मद के चचा का बेटा है। सबको उसकी सरदारी कबूल है। दूसरी बात, उबैदुल्लाह तुम्हारा दुश्मन है और तुमसे दोस्ती और सुलह मुमकिन नहीं। सब जानते हैं कि तुमने उसके दोनों बेटों को शहीद किया है।
1: मैंने नहीं, बोस ने।
2: ठीक है अमीर, तुमने नहीं, बसर ने कत्ल किया है।
1: सुना बोस, हसन इब्ने अली ने उबैदुल्लाह इब्ने अब्बास को अपने लश्कर का सिपह सालार बना दिया है। तुम उसे अच्छी तरह जानते हो ना? जी अमीर, वो भी तुम्हें अच्छी तरह पहचानता है। हाँ अमीर, इधर आओ। अगर इब्ने अब्बास मेरे आदमी के साथ तन बतन लड़ना चाहे तो मैं तुमको उसके साथ इंतखाब करूंगा। कैसा रहेगा?
3: ठीक है अमीर, खुदा ने यही मुकर्रर किया है कि इब्ने अब्बास की नस्ल मेरे हाथों तबाह हो। उसके दोनों बेटों को मैंने यमन में कत्ल कर डाला और अब खुद उसकी बारी आ गई है।
1: देखा, मैं बुशर की परस्तिश करता हूं। बेतवक्को इंसान है जो सिर्फ कत्ल करने की फिक्र में होता है। न कूफे की हुकूमत चाहता है, न बसरा और न यमन।
2: वो एक जंगली कुत्ता है और खुद एक शैतान है।
1: तुम उसे कहते हो शैतान?
2: तुम्हारे अतराफ में जो भी मौजूद हैं उनमें इस दरिंदे से ज्यादा डरता हूं।
1: वल्लाह अमर, अगर तुमने फिर से लोगों के सामने मेरी बेहुरमती की तो तुम्हें बुसर के हवाले कर दूंगा।
2: अमीर, ये मजाक का वक्त नहीं है। हमें सोचना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए। जवाब के लिए कासिद मुंतजर है।
1: अच्छा, बताओ और क्या जानते हो?
0: इसी दिन फौज का हरावल दस्ता अबू हमजा, जो कि किंदी के नाम से मशहूर है, की सरबराही में कूफे से शाम की जानिब निकल गया।
1: जानते हो इसे?
2: नहीं।
1: तुम किंदी को पहचानते हो?
4: जी, पहचानता हूं अमीर। कबीला किंद का रहने वाला एक तुंद मिजाज शख्स है। सरदारी का भी खां है और अली इब्ने अबी तालिब के साथ सिफीन में भी रहा है।
0: दूसरे दिन मस्जिद कूफा में हसन इब्न अली पे तीरों से हमला किया गया।
1: क्या कहते हो?
0: हमलावर उसी वक्त मारा गया और हसन इब्न अली को मामूली सा जख्म आया।
1: मारने वाला कौन था?
0: मुझे नहीं मालूम अमीर।
1: खवारिज में से था?
0: लोग तो यही कह रहे थे। बुलवाई गली कूचों में नारे लगाते हुए खवारिज के घरों पे पथराव कर रहे थे और चाह रहे थे कि खवारिज के घरों को आग लगाई जाए, मगर इतने में इब्ने अब्बास, कैस और सईद ने आकर लोगों को इस काम से मना कर दिया और कहा कि यह काम खवारिज का नहीं बल्कि माविया का है और लोगों को वहां से मुंतशिर कर दिया।
1: लानत तुझ पे और तेरे जासूसों पे मुगैरा। देखा मुझे कैसे कूफे से खबरें मिलती हैं? वैसी खबर इतनी मुद्दत के बाद। अब मैं तेरे जासूसों को कोई पैसा नहीं दूंगा बल्कि एक एक का नाम इब्ने अब्बास को भेजूंगा कि कूफे में उनकी गर्दनें उड़ाए। अब ये समझता क्यों नहीं है? अनकरीब जंग दरपेश है। हुकूमत को हवा करना चाहता है।

0: क्या मुझे मिटाना चाहता है? और क्या जानते हो?
1: अमीर, कुछ भी नहीं, मैं उसी दिन कूफे से निकल गया था।
0: जाओ, वो 5 सिक्के जो तुमने लिया है, अब 50 कोड़े खाओ। बोस, 5 कोड़े काफी है। बोस, कोड़ों की जरूरत नहीं है, उसे जाने दो, जाए।
2: लश्कर चलने के लिए तैयार है, क्या हुक्म है अमीर?
0: जाए भाड़ में।
2: उसका सरदार कौन रहेगा अमीर?
0: मैं हूं। थका दिया है मुझे, जाओ यहां से।

0: हम में से कौन दमिश्क में रहेगा?
1: कोई नहीं, सब मेरे साथ चलेंगे।
0: जी
2: अमीर, क्या मेरा भी आपके साथ चलना जरूरी है?
1: बिल्कुल मुगैरा, मैं तुम्हारे मशवरे से महरूम रहना नहीं चाहता। आम्र,

0: क्या कह रहे हो? उसे उसके हाल पे छोड़ दो, ना कुछ देखता है और ना ही कुछ सुनता है। देखा, खून की बू ने उसे मस्त कर दिया है, कत्ल गारत का ख्वाब देखता है। चलो बताओ अम्र।
1: हसन इब्ने अली ने तुम्हें इस खत के साथ मुकम्मल जंग के लिए बुलाया है, समझे?
0: ठीक है, हम भी इस्तकबाल करेंगे।
2: ये वही चीज है जो कि वो चाहता है।
1: अव्वल खलीफतुल मुस्लिमीन के नाम तुम्हें इताअत की दावत दी जाती है, और जब तुमने कबूल नहीं किया तो उन्होंने जिहाद का हुक्म दिया, और इस तरह उन्होंने सब पर अपनी हुज्जत तमाम की और सबका रास्ता बंद कर दिया। उनका भी जो सुलह चाहते थे, खवारिज का भी जो जंग पर आमादा हैं, तुम भी तो नाफरमानी और जिद पर अड़े हुए हो। तुमसे जंग करेगा अगर कामयाब हो गया तो बिलाशक तमाम इस्लामी ममालिक का खलीफा होगा, अगर शिकस्त खा जाए तो मुसलमानों की इमामत को तुमसे उस शख्स के उनवान से जिसने खिलाफत को बैत से नहीं बल्कि तलवार से हासिल की है ले लेगा।
0: तो हमारे पास एक रास्ता है, उससे सुलह के लिए आमादा करें।
1: अय अबू सुफियान के बेटे, ऐसा ख्याल अपने जहन से निकाल दो, हसन इब्ने अली हरगिज़ तुमसे सुलह नहीं करेगा।
0: तो बताओ ना क्या करें।
1: बताऊंगा बताऊंगा अमीर बताऊंगा, मुझे अच्छी तरह सोचने दो, फिर सोचकर बताऊंगा।

0: For 60 years, Tanfoam has been part of the dreams, comfort, and lives of Tanzanians. Generations have changed, times have changed. But one thing has remained the same, the assurance of a good night's sleep. Today, this legacy of excellence has earned Tanfoam official recognition as a super brand. From cities to villages, Tanfoam is ours. We trust it. It has raised generations. The people of Tanzania have spoken. There is only one mattress. Tanfoam. It supported our grandparents, and today their grandchildren still sleep on it.
1: सरंजाम सन 61 हिजरी कमरी में उमर साद ने रे की बादशाहत के ख्वाब के तहत एक इंतहाई बड़े लश्कर के साथ इमाम मजलूम और उनके कलील साथियों का रास्ता रोक दिया। तारीख की गवाही के मुताबिक सन 61 हिजरी की 10 मुहर्रम उल हराम को वाकया आशूरा वकूह पजीर हुआ और एक गैर बराबर जंग में इमाम मजलूम और उनके साथी शहीद कर दिए गए।

0: और तुम लोगों पर जो भी मुसीबत आए वो तुम्हारे अपने हाथों से किए हुए अमल का सिला है और वो बहुत माफ करने वाला है। ये मेरा कलाम नहीं है, कलाम वही खुदावंदी है। वो फरमाता है हर वो मुसीबत जो तुम्हें पहुंचे वो उन आमाल की वजह से है जो तुमने अपने हाथों से किए हैं। आरई की तरह हुसैन इब्न अली ने अमीरुल मोमिनीन के खिलाफ कुरूज किया, यहाँ तक के हय सुभान का इरादा ये हुआ कि आप मोमिनीन के हाथों शर दफा हो जाए और एक अजाब शदीद का मजा चखाए। और काश खुदावंद झूठ बोलने वालों को
1: तुम्हारे मुंह में खाक हुए बरजाना के बेटे। तुम हुसैन को झूठा और झूठे का बेटा कह रहे हो? खुदा की कसम झूठे तुम हो और तुम्हारा फासिक और जाहिल खलीफा के ताकत की प्यास से तुम लोगों को अंधा कर दिया और तुम लोगों ने अपने हाथ खुदा की मखलूक के सच्चे तरीन बंदे के खून से आलूदा कर दिए। वाह हो तुम पर कि तुमने फरजंदे रसूल के कटे हुए सर पर और उनके नाज़दील लबों पर चूबे खजरा से मारा।
0: बिन हुरैस, इस बूढ़े कुत्ते को जिंदा देखना चाहता हूँ।
1: कल के खुदा के बदतरीन लोग हो। मैंने ज़ैद इब्ने अरकम से सुना है कि इस मलून ने उसके लबों पर चुभे खैजरा मारी जिनको बारहा रसूल खुदा ने चूमा है।
2: घर का दरवाजा टूट गया, क्या बात है? किस बात से डरे हुए बाबा?
1: आसमा मेरी बेटी, क्या लकड़ियाँ जल रही हैं?
2: जी बाबा, मैंने पानी गर्म किया है आंख का जख्म धोने के लिए।
1: अब हमें अपनी जान का जख्म धोना है बाबा की जान। इन जख्मों को भूल जाओ, मेरा कफन ले आओ, मुझे मौत का गुस्ल करना है।
2: मेरा दिल मुंह को आ रहा है बाबा, क्या हुआ है?
1: अब्दुलरहमान, तुम ही इसे कुछ बताओ।
3: वक्त कम है, कुछ जरूरी सामान उठा लो अस्मा, हमें देर किए बगैर कूफे से जाना होगा।
2: कूफे से चले जाएं, मगर कहाँ?
3: मक्के, हमें काबे की पनाह में जाना होगा।
2: क्यों?
3: उन्होंने इब्ने मरजाना को मिंबर पे रुसवा कर दिया, उसके कुत्ते हमारा पीछा कर रहे हैं। जल्दी करें, कहीं देर ना हो जाए।
2: खुदा की कसम, मुझे पता था कि ये मस्जिद जाएंगे तो खामोश नहीं बैठेंगे। इन चंद दिनों में इतना हुसैन के लिए रोए हैं कि इनकी आंखों के आंसू खुश्क हो गए हैं। खुदाया, तू ही हमारी फरियाद सुन ले।
1: अब्दुलरहमान, तुम दोनों यहाँ से जाओ, मैं यहीं रहूँगा।
3: यहीं रहेंगे? वो जी आपके टुकड़े टुकड़े कर देंगे। आप चाहते हैं आपके टुकड़े एक एक कुत्ते के मुँह में हो?
1: मैं न देखने वाली आँखें रखता हूँ न भागने वाले पाँव। आप लोगों की गर्दन का वबाल बन जाऊँगा। मैं मौत के दाहिने खड़ा हूँ अब्दुलरहमान।

0: इससे पहले कि हम घर का दरवाजा तोड़ दें, इसे खोल दो।
1: भाग जाओ अब्दुल रहमान, भाग जाओ। तुम्हें मेरी बेटी अस्मा की कसम है, इस कौम के दिल में रहम नहीं है। फरजंदे रसूल के घराने की औरतों के साथ क्या किया इन लोगों ने, सिर्फ मेरी तलवार मुझे दे दो, मेरी तलवार दे दो।
2: बाबा ये लीजिए तलवार।
3: इतनी बातें की आपने कि वो लोग आ गए।
1: जल्दी करो, छत से भाग जाओ तुम लोग, मैं इन्हें मसूद
0: कर। दरवाजा तोड़ दो।
1: भाग जाओ अब्दुल रहमान।
3: अपनी दयानत का क्या करूं, अपने गुरूर और गैरत का क्या करूं।
4: चाहता हूं
2: सामने देखो बाबा।

0: हराम ज़ादों, खुदा की कसम मैं अंधा ना होता, मैं तुम्हारी माँओं को तुम्हारे गम में रुला देता। आसमा अब्दुल रहमान, आसमा बाबा की जान, अगर कैद हो गई तो बेकरार मत होना। रसूल खुदा की नवासी ज़ैनब कुबरा को याद करो ताकि सुकून मिले। तुम्हारा दाग ज़ैनब के दाग के मुकाबले में बहुत हकीर है बाबा की जान।
1: आय आय आय आय, मुझे यकीन नहीं आता कि एक छोटा सा जख्म इतना कुदरतमंद हो सकता है कि मेरा चैन छीन ले। तलवार का जख्म भी इतना तकलीफ दे नहीं होता। क्या हुआ तबीब, ये कैसी आफत है जिसने हमारी रान को अलमनाक कर दिया है। आहिस्ता आहिस्ता गोया मुझे फालिज हो रहा है।
2: वैसे ये इतना परेशान कुन नहीं होना चाहिए। एक भरा हुआ फोड़ा है जो अनकरीब फटने वाला है, अगर इसका मवाद निकल आए दर्द खत्म हो जाएगा।
1: कोई नोक चुभो तो ताकि हमें सुकून मिल जाए तबीब।
2: एक दो दिन रुक जाइए ताकि खूब पक जाए। अभी तक इसका पानी सही तरह भरा नहीं है, सख्त है।
1: किसी चीज से इसे नरम नहीं कर सकते?
2: बेहतर रहेगा इसे भी ना छेड़े। मैं डर रहा हूँ कि अगर इसे अभी छेड़ दिया तो कुछ मादा अंदर खून में ना रह जाए, अगर खुद ही पक जाए तो आपके खून को पाक कर देगा।
3: ये फोड़ा नहीं है, मुझे कुछ और लग रहा है तभी। ये जख्म उस खून के खतरे से है जो अमीर के मुंह पर टपका।
1: दिमाग खराब है तुम्हारा माकल, क्यों फजूल की बातें कर रहे हो?
3: आप समझ लीजिए कि मैं फजूल की बातें कर रहा हूँ। ये जख्म एक ऐसा तिलसिम है जो विर्द और दुआ से खत्म होगा, ना कि दवाओं से।
2: मामला क्या है माकल?
1: इसकी बातें मत सुनो तबीब, इसका दिमाग खराब है।
2: बहरहाल बेहतर यही है कि एक दो दिन इसके दर्द को बर्दाश्त कीजिए। बर्दाश्त ना हो सके तो थोड़ी सी शराब पी लीजिए ताकि आराम से सो जाएं।
4: इजाजत है या अमीर?
1: हाँ बिनु हरिस, अब क्या हो गया?
4: कुर्बान जाऊं, बिन अफीफ को गिरफ्तार कर लिया है और इस वक्त महल में मौजूद है।
1: बिन अफीफ कौन सा गधा है?
4: वही अंधा बूढ़ा है जिसने मस्जिद में गुस्ताखी की। उसका घर जल गया, उसकी एक जवान बेटी भी थी जो एक जलती हुई लकड़ी लेकर सिपाहियों पर हमला कर रही थी, मजबूरन उसे मार दिया गया।
1: फिलहाल उसे कैद कर लो जब तक मेरे पैर का

0: दर्द खत्म हो जाए।
1: जी अमीर।
0: बेनोरेस।
1: जी अमीर।
0: अगर जेल में शोर करे और कैदियों में हंगामा बर्पा करे तो उसे मार मत देना। उस खुरमा फरोश की तरह ना हो जाए कि उसे दार पर चढ़ा दिया फिर मुझे बताया। तुम लोगों की नादानी बायस हुई कि अली की पेशन गोई मी समेत तमार के हवाले से ठीक साबित हो जाए, और ये खुराफाती लोग पहले से ज्यादा अली के मौजजात पर ईमान ले आए।
1: कुर्बान जाऊं, जब मीसा में तमाल ने कैदियों में हंगामा आराई की तो आपने फरमाया था कि इसकी जबान काट दी जाए और खजूर के दरख्त पर सूली पे लटका दिया जाए, आपको याद
0: है? हाँ ठीक है, मैंने हुक्म दिया था, क्योंकि हुसैन का मसला बाइस बना कि हम मीसा में तमार के दावे को भूल जाएं। आप लोग तो होशोवास में थे, चाहिए था कि हमें याद दिलाते। जाओ, अब ध्यान रखना कि तुम इसके बाद गलती ना करो।
1: जी अमीर।
2: चलाओ चलाओ, रुक जाओ। तुम्हारा मेहमान है ये मुख्तार।
3: मुख्तार,
2: अच्छा हम नशीन है, तनहाई महसूस नहीं होगी? अब सुबह तक बैठो और लंबे चौड़े किस्से कहानियां सुनाओ और सुनाते रहो, मैं तो चला।
3: यानी बिन हफीफ इतना खुश नसीब है कि एक शेर दिलावर का हम नशी हो सके। मुख्तार, मुख्तार, कहाँ हो दिलावर, कहाँ हो दिलावर? अबू इसहाक, मैं हूं बिन आफीफ, तुम्हारा सफेन का साथी। तुम्हें याद है अली की राह में हमने मौत से क्या क्या लड़ाइयां की हैं? मैंने तुम्हारी आंख के जख्म के बारे में सुना है। मैंने अली की राह में आंख दे दी और तुमने उनके फर्जन मौला हुसैन के लिए। खुदा हम दोनों से कबूल फरमाए।

0: तुम्हारी आंख के जख्म से तो पस निकल रहा है दिलावर।
1: तुम यहां क्यों हो बिना फीफ?
0: मैं कोड़े खाने और खाल तुड़वाने आया हूं ताकि दागे हुसैन को बर्दाश्त कर सकूं। मेरी अंधी आंखें मेरे कानों का हिजाब बन गई और मैं हुसैन की हाल में नासिर की आवाज को ना सुन सका। जब मैंने सुना कि हुसैन को शहीद कर दिया गया और उनके अहले बैत को असीरी पर ले गए, खुदाया मुझे अंदर ही मशहूर करना ताकि तेरे रसूल का सामना न करना पड़े। खुदाया सिफैन में जब मेरी आंखों पर जख्म लगा, मेरे मौला अली ने जख्म पर हाथ रखकर मेरे देखने की कुव्वत मेरे कानों को बख्श दी ताकि मैं अंधा न रहूं। तो फिर मैं अंधा क्यों रहा और करबला ना पहुंच सका?

खुदाया तेरी बहिश नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ इतनी मोहलत दे दे कि मेरा हाथ दोबारा तलवार के कब्जे पर पहुंच जाए। उसके बाद अगर तूने चाह के मुझे दोजख में भेज दे

0: तो भेज देना।
1: मैंने तुम्हें पहचाना नहीं लड़की, कितनी दुखी और टूटी हुई नजर आ रही हो।
2: न जाने मैं क्यों अब तक मरी नहीं।
1: अल्लाह ना करे, यहाँ क्यों खड़ी हो, अंदर आओ।
2: नहीं जा रिया, मुझे जाना होगा।
1: कहाँ जाओगी, आओ जरा बैठो, सुकून का सांस लो। कुछ खाओगी?
2: उस रोटी और नमक की हुरमत की वजह से जो हमने एक साथ खाई है, हमारी कुर्बतदारी की वजह से आई हूँ। मुख्तार की आंख का जख्म पक गया है जारिया, फूलों को से अंधा कर देंगे। मैं आई हूँ ताकि तुम उमर से कहो कि अम्मी से सिफारिश कर दे, ताकि मैं उसके लिए मरहम ले जाऊँ।
1: तुमसे क्या छुपाना बहन, उमर जिस दिन से करबला से लौटा है अपने ऊपर दरवाजे बंद कर चुका है, अपने आप को खुद मारता है। आजकल दीवानों से कम नहीं लगता, ना सोता है ना खाता है।
3: कौन था जारिया, क्या काम था उसे? मैंने हुसैन को नहीं मारा, मैं करबला में कुछ नहीं कर सकता था। जो भी कियासिल जोशन के बेटे ने किया, मेरा कोई इख्तियार नहीं था, कोई इख्तियार नहीं।

0: उमरा, उमर को तुमसे बात करनी है। रुको, उससे बात करो, शायद उस बीमारी से उसकी जान छूट जाए। वो करबला में था मगर उसने किसी को नहीं मारा।
1: मैंने भी यही सुना था कि उमर का करबला में कोई इख्तियार ना था, इसी वजह से अपने दिल को राजी करके यहाँ आई हूँ ताकि मुख्तार की जराहत के लिए कुछ कर सकूँ। अब जबकि मैंने उसे देखा है, मुझे यकीन है अगर उसके हाथ इब्ने ज़ियाद और शिम्र से ज्यादा खूने हुसैन से आलूदा नहीं होंगे तो कम भी नहीं होंगे। इब्ने ज़ियाद भी जो कि खूने हुसैन बहाने का बाइस बना, वो भी करबला में ना था। ये तमाम दीवानगियाँ उन खूनों का नतीजा है जो करबला में बहाया गया है। मुख्तार अंधा हो जाए, ये उसे कहीं बेहतर है कि मैं हुसैन के कातिलों का सहारा लूं।
2: चली जाओ, मर जाओ।
3: मौला के बारे में मैंने सुना है कि आशूर के दिन कूफियों पर इत्माम हुज्जत के लिए सामने जाकर कहा, अगर तुम लोगों का कोई दीन नहीं है तो कम से कम आजाद रहिए। मैं आप लोगों के बुलाने पर कूफे की सिमत आया हूँ। तुम लोगों के बेशुमार खतूत गवाह हैं। तुम लोगों ने जो मेरा रास्ता रोक रखा है, तुम इसे बहुतों के नाम उनमें लिखे हुए हैं। अपने बुलावे से पशेमान हो, ठीक है। मेरा वापसी का रास्ता क्यों रोक रखा है? रास्ता खोल दीजिए, मैं इराक के अलावा किसी और जगह चला जाऊंगा। कूफियों ने इससे ज्यादा बात करने की मोहलत न दी, उनकी तरफ तीर चला दिया, उनकी तरफ तीर चला दिया।
4: हाय निसम, निसम कहाँ हो? खुदा से दुआ मांगो कि तुम्हारी बशारत को पूरा कर दे।
3: निसम तमार
4: ने मुझे एक बशारत दी है।
3: खुदा की कसम, निसम तमार एक सच्चा इंसान था। उसने सालों उस खजूर के दरख को पानी दिया है जिसका मौला अली ने वादा किया था कि ये मीसम का दार है। वही हुआ मुख्तार, मीसम को उसी दरख पे दार पे लटकाया गया। जब तक मीसम को दार पर नहीं लटकाया गया मुझे यकीन नहीं आता था। मुझे लगता था कि मीसम वहम का कैदी बन गया है। उसने तुम्हें कैसी वही सुनाई है?
4: बशारत दी है कि मैं अपने मर जाने को जहन्नुम वासिल करूंगा और उसके मुंह पर लात मारूंगा।
3: तो फिर मारोगे तुम उसे, उसके मुंह पर लात भी मारोगे। शक मत करो,

मैं मार दूं, मैं खुद उसका खून बहा हूं। जो भी खुदा की राह में मारा जाए उसका अजर खुदा की कुर्बत है। मुस्लिम इब्ने अकील मारे गए, क्या सआदत थी उसकी, माशूक के दीदार को पहुंच गए, अपने आप को खुदा तक पहुंचा दिया। हम बदबख्त लोग ऐसे बदनसीब हैं कि जमाने की इबरत बनकर जी रहे हैं, इस दोजख में खुशी खुशी रह रहे हैं, हशरातुल अर्ज के साथ मशहूर हैं एक अंधेरी कालकोठरी में। क्या ये जायज है कि हम घूमने फिरने से रह गए हैं खुल्द बरी और जन्नतुल मावा में? तोड़ दो इस दरवाजे को जो तुम्हारे और खुल्द बरी के बीच हायल है। खुदा की कसम, तुम्हारी हयात तुम्हारी मौत में है।

0: इस जेल के ताले को हाथ मत लगाना।
1: कैदियों ने मीसम की सरबराही में हंगामा राही शुरू कर दी है। वक्त रिहाई है मुख्तार।
0: इस हंगामा राही में रिहाई नहीं है, खुदकुशी है।

0: मिला आखिर वो काम किया तुमने कि तुम्हें भी मेरी तरह जिंदा दफना दिया गया इस कब्र में।
1: कब्र कहाँ और ये जहन्नुम कहाँ अबू इसहाक, फिशार कब्र और उसकी वहशत से खुदा की पनाह। राह कूचा यार बहुत पेचुखम वाली है, ये कैद उस राह का आगाज है। दुआ करो कि इस राह के इन पेचुखम और फरेब और हीलों में गुम ना हो जाए।
0: गुम नहीं होंगे, आसमान पर कोई सितारा नजर आ जाएगा रहनुमाई के लिए।
1: अगर आसमान बादलों से भरा हुआ हो तो फिर, अगर हम चल रहे हों और रास्ते में कुआं आ जाए। बहुत सों के सर आसमान की तरफ उठे हुए थे, वो कुएं में गिर गए, ऐसे में कैसी खाक अपने सर पर उड़ाएं।
0: घबराओ मत मीसम, रास्ता दुश्वार भी है और पेचोखम वाली भी, मगर हम भी रास्ता न जानने वाले नहीं हैं। हुब्बे अली हमारी राह का निशान है।
1: मैं दीवाना हूं मुख्तार।
0: बेकार बातें मत करो, तुम दीवाने ठहरे तो फिर अक्लमंद कौन होगा।
1: क्या तुम आशिक हो मुख्तार?
0: मेरा जाहिर क्या बताता है?
1: तुम्हारा जाहिर कुछ गलत बयानी कर रहा है, खुसूसन तुम्हारी आंख का जख्म। शैतान से मुहतात रहना मुख्तार, तुम एक बड़े काम के लिए मबूस किए जाओगे। तुम मरजाना के बेटे को मारोगे और उसके मुंह पर जूता मारोगे। उस वक्त अपने पांव के नीचे के कुएं से गाफिल मत होना, मुमकिन है वो तुम्हें दोजख की कब्र तक पहुंचा दे।

0: जनाब यह खुरमा फर्रोश सुधरने वाला नहीं है, जब देखो बकवास करके कैदियों में हंगामा आना ही शुरू कर देता है।
1: अमीर के हुक्म से इसकी जबान काट दो और लोगों के सामने दांत पे लटका दो।
2: मैं एक बड़े काम पर मबूस किया जाऊंगा,

0: इसकी बदबू फैल रही है। जाहिरन तुम्हारी रानी मरहम ने भी कुछ नहीं किया, तभी ये तो बदतर हो गया, बेहतर नहीं।
1: मैं खुद इस जख्म के मामले में हैरान हूँ अमीर। अगर इन तीन जड़ी बूटियों को मोम और शहद में मिलाकर लगाया जाए तो हर किस्म की बदबू खत्म हो जाती है। मैंने इस मरहम से बड़े बड़े मौजजे देखे हैं, ताजुबे के जख्म पर कोई असर नहीं किया। इस जख्म का पीप तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। ऐसा लगता है कि बदबू की जड़ें दरिया में हैं।
0: यूं कहो कि इसकी जड़ें खिला में हैं, शर्माओ नहीं, बल्कि खिला में भी ऐसी बदबू नहीं होती। इसके दर्द को दफा करो, इसकी बदबू का कुछ करो। इसकी उफूनत ज्यादा बदबू हमारी हालत खराब कर रही है। आसपास वाले हमसे बेजार हैं। कुछ अरसे से औरतों ने भी हमारे पास आना छोड़ दिया है।
1: बदबू का इलाज सिर्फ गुलाब है अमीर। इस जख्म को अरके गुलाब से बार बार धोना होगा। हमें
0: धो धो, जो भी कुछ कर सकते हो करो, इसकी बदबू खत्म कर दो। आए, आए, आए, आ, मौत कितनी बड़ी नेमत है। दर्द बुरी तरह मेरे रग रग में घूम रहा है। लगता है आंखों में सुइयां चुभ हो जा रही हूँ। हाय हाय, मेरा सर दर्द से फट रहा है। यूं लगता है मेरी जान निकल जाएगी। ये जख्म कोई आम जख्म नहीं है, ये गैब का तीर है, गैब का तीर।
2: हजियान क्यों बोल रहे हैं? आप तो इन फजूलियात को नहीं मानते थे।
0: अब मानने लगा हूँ मैं, फजूलियात को मानने लगा हूँ मैं। तुम्हारी तरह का हो गया हूँ। ये जख्म उसी खून के खतरे का नतीजा है।
1: कौन से खून का खतरा? सरकार, मैंने कई बार आप लोगों की ये राज भरी गुफ्तगु सुनी है। आप लोग जो भी जानते हैं तबीब से मत छुपाइए। बाज़ औकात इलाज की कुंजी उन बातों में होती है जो जाहिरन ला ताल्लुक नजर आ रही होती है।
0: तबीब, एक दिन हमारे पास कटा हुआ सर लाया गया। उस कटे हुए सर से एक खून का कतरा मेरी रान पर बहा। उसके दूसरे दिन से इस जगह पर जलन और खारिश जाहिर होने लगी और फिर ये लाइलाज जख्म बन गया। मुमकिन है कि वो खून का कतरा जहरीला हो और उसकी वजह से जख्म बन गया हो।
1: ये खिलाफ अक्ल है सरकार,
2: ये वहम है, खुराफात है। उस कटे हुए सर

0: से कतरा आपकी रान पर गिरा मगर 10 कतरे मेरे हाथ पांव पर गिरे। मुझे तो कोई बीमारी नहीं हुई।
1: इन फजूलियात को तुमने मेरे दिमाग में डाला है और अब तुम ही इसका इनकार कर रहे हो।
0: इनकार करने वाले पर लानत। मैं अब भी यकीन रखता हूं कि ये जख्म नजरे बद का अंजाम है। आपको नजर लगी है। पिछली कामयाबियां जो कूफे में आपने हासिल की हैं उसकी वजह से बद नजरों ने आपको नजर लगा दी है। इस जख्म की दवा दुआ है। शायद कोई तिलिस्म हो जो सहर और जादू से ठीक हो सके।
1: तुम इन फजूलियात को मानते हो तबीब?
2: तमाम तबीब हजरात किसी माकूल वजह की तलाश में रहते। ये सहर और जादू सिर्फ झूठ और फरेब हैं कि लोगों की जहालत को रंबालों ने अपनी माश का जरिया बना लिया है। इल्म तिब में हर बीमारी की कोई वजह होती है और हर वजह की दवा होती है। अगर वजह पता चल जाए हर बीमारी ठीक की जा सकती है।
1: पता लगाओ, वजह पता लगाओ। मुझे डर है बिलाखिर ये जख्म मेरी हड्डियों तक सराइत कर जाए और उसे गला दे।
0: किसी ने आपको देखा तो नहीं?
3: मैं यहाँ चोरी करने नहीं आई हूँ कि मुझे किसी के ना देखने का ध्यान हो।
0: मेरा मकसद ये था कि किसी ने आपको पहचाना तो नहीं।
3: आप किस बात से डर रहे हैं? क्या आपको ये डर है कि आपका मकाम कूफे के उस सफाक हाकिम की नजर में गिर जाएगा?
0: बानो उमरा, मकाम मंजिलत का मसला नहीं है। इब्ने ज़ियाद जिस पर भी शक करे उसे जमींबोज कर देता है। उसे बू भी मिल जाए कि मैं मुख्तार और उसकी अहले बैत और साथियों से किसी भी किस्म का मिलाप रखता हूँ, मेरी हस्ती को वीरान कर देगा। वो मुख्तार को अपने शदीद तरीन दुश्मनों की सफ में रखता है। मुझे तो हैरत है कि मुख्तार के कैद होने पर कैसे राजी हो गया और उसे मारा नहीं।
3: मार देगा कुछ देर नहीं कि अगर इसी तरह से जिंदान में रहा तो मुख्तार जिंदान में ही मर जाएगा। वो मुख्तार को तकलीफें देकर मारना चाहता है।
0: खुदा आपके बुजुर्गों की मगफरत करे। आप किस बात की तवक्का है? मैं इस मामले में क्या कर सकता हूँ? मैं कुछ नहीं कर सकता।
3: तुम मुख्तार के चाचा साहब भाई हो जायदा। तुम और मुख्तार एक खून से हो, एक नस्ल से हो, तो फिर इन रिश्तों का क्या फायदा? आप तो मुख्तार के रिश्तेदार हैं। अगर आप उसकी मदद ना करेंगे तो खैरों से क्या तवक्को?
0: नहीं हो सकता बानो, आप क्यों नहीं मान रही? खुदा रसूल की कसम, अगर मेरे जैसों की शफात का कोई भी फायदा हो सकता तो मैं कोई मुजायका नहीं करता। मैं डरता हूं कि मुख्तार के लिए ऐसा कोई भी कदम उठाना उसकी मौत का बाइस बन जाएगा।
3: मैं ये नहीं कहती कि आप मुख्तार की आजादी के लिए कुछ करें। मुख्तार जख्मी है, उसका जख्म पक चुका है, उसे तबीब और मरहम की जरूरत है। मैं चाहती हूँ कि कुछ ऐसा कीजिए कि कम से कम अंधा ना हो जाए।
0: कितना गलत हुआ कि हम मुख्तार के चचा साथ भाई बन गए।
1: जनाब ज़ायदा इब्ने कुद्दामा, तुम मेरे काबिल एतमाद लोगों में से एक हो। तुम्हारा मामला मुख्तार से बिल्कुल अलग है। मैंने चाहा कि तुम अपना फर्ज समझकर हमारी और खलीफा की हुकूमत की एक मदद करो, जो कि हर मुसलमान की शरई जिम्मेदारी है। जैसा कि तुम जानते हो कि मुख्तार हमारा कैदी है, मगर तुम और मैं, हम सब ये जानते हैं कि मुख्तार का जिंदा रहना एक संजीदा और छुपा हुआ खतरा है खलीफा की हुकूमत के लिए। मुझे बावसूख खबर मिली है कि मुख्तार कौम बनी सकीफ, अशायरा और अजमों के दरमियान काफी असर व नफूज रखता है। मैं तुमसे चाहता हूं कि उसके असर व नफूज को खत्म कर दो।
0: कबीले सकीफ की तरफ से तो मुतमईन रही है अमीर। सकाफियों की ना तो कूफे में कोई खास कुदरत है, ना ही ये लोग सियासी तनाजात वाले लोग हैं। इन लोगों में से ज्यादातर अपनी खेतीबाड़ी और भेड़ बकरियों में मसरूफ हैं। उनका मुख्तार से और उसके अकीदों से कोई सरोकार नहीं है। मुख्तार की दोस्ती ज्यादातर अजमों से है। कबीला सकीफ मुख्तार से नाराज हैं, इसकी वजह भी यही है। अजम लोग हमारे आजाद किए हुए हैं, अरब के गुलाम हैं। हमारे लिए बहुत शर्मनाक बात है कि मुख्तार की उन लोगों से दोस्ती है और वो अरब और अजम को एक बराबर समझता है।
1: मुख्तार का साथ देने वाले अशायर की क्या खबर है?
0: अशायर भी खतरे से बाहर हैं। उनमें से ज्यादातर लोग सहरा नशीन और खाना बदोश हैं। कूफे में तो रहते नहीं हैं, सिवाय साल में एक दो महीने के।
1: ठीक है, مگر ان سب کے باوجود ہمیں مختار کے نفوذ اور اس کے نہ دکھنے والے لشکر سے غافل نہیں رہنا چاہیے. جب تک مختار زندہ ہے یہ گروہ سر پر منڈلاتے ہوئے خطرے کی طرح ہیں. صرف مختار کی موت ہی انہیں ٹھنڈا کر سکتی ہے.
4: میں امیر کے ارادے کے سامنے سر تسلیم خم کرتا ہوں. بے شک آپ حکومتی آفتوں اور خطروں کو دفع کرنے میں سب سے زیادہ مہارت رکھتے ہیں. جو بھی مصلحت ہے وہ کیجیے. مختار آپ کے پنجے کی گرفت میں ہے, آپ اس کے وجود کو مٹا سکتے ہیں.
1: تم یہ زحمت اٹھاؤ یہ میری خواہش ہے.
5: مطلب کیا کرو امیر؟ مختار کو مار دو.
6: جی میں اسے مار دوں؟ اپنے چچا زاد بھائی کو؟
1: خلیفہ کی بقا اور دوام کے لیے کر رہے ہو بندے خدا؟ تمہارا اجر و ثواب اپنی جگہ, ہمارے رحم و کرم سے بھی خالی ہاتھ نہیں رہو گے. عمارت سے لے کر سونے تک جو بھی چاہو.
6: میں ہی کیوں امیر؟ یہی کافی ہوگا کہ ایک سپاہی کو چند دینار کی لالچ میں خرید لیجیے کہ وہ مختار کو مار دے.
5: مختار کا میرے ہاتھوں مارا جانا وہ شرمندگی ہے کہ جب تک میں زندہ ہوں مجھے ڈستی رہے گی.
1: کوئی بھی نہیں سمجھے گا کہ مختار کو تم نے مارا ہے. یہ ایک راز ہے میرے اور تمہارے درمیان. اپنے چچا زاد بھائی مختار کو دیکھنے کے بہانے زندان میں جاؤ گے, قیدیوں کی آنکھوں سے بچتے ہوئے ایک مرہم اپنے ساتھ لے جاؤ گے. جیسے ہی مرہم کو مختار کی آنکھ کے زخم پر لگاؤ گے تمام قصہ ختم ہو جائے گا. مرہم ایک جان لیوا زہر سے بھرا ہوا ہوگا, وہ خود ہی مختار کی جان لے لے گا.
6: یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے کہ میرے علاوہ کوئی اور نہ کر سکے. اور بھی بہت سے لوگ ہیں جو یہ کام کر سکتے ہیں.
1: اگر میرے پاس ایسا شخص ہوتا تو میں تمہارا دامن نہیں پکڑتا. مختار ہر چیز اور ہر شخص پر شک کرتا ہے. ہم نے جو کچھ بھی دوا اور علاج کے لیے بھجوایا اس نے منع کر دیا. میں کھلم کھلا اسے نہیں ماروں گا کیونکہ میں نے بنو حریث سے وعدہ کیا ہے. بنو حریث ایک کام کا آدمی ہے, اس نے بہت سی خدمتیں کی ہیں اور کر رہا ہے. میں اسے مایوس نہیں کرنا

0: फौज पे एक सन्नाटा छा गया और लोग खामोश हो गए। मैं छावनी छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन चूंकि आपको इस माजरे से आगाह करना था, इसलिए यहाँ आया। अभी सूरज डूब ही रहा था कि मुझे खबर मिली कि कुछ फौजी वहाँ से भाग गए हैं, इसलिए मैं रात में सफर तय करके यहाँ आया।
1: तुम यहां आने से पहले ही लोगों को पता चल गया था।
0: जो लोग भागे थे, उन्होंने इस खबर को फैलाया।
1: वही जासूस और गारतगर और माविया के मजदूर भी थे, लेकिन तुम्हारा यहां आने से पहले ही लोगों को कैसे पता चल गया? हारिस, हारिस, तुम अपने दो बेटों को मदाइन भेजो ताकि ये खत हसन इब्न अली तक पहुंचा दें।
0: मैं ले जाता हूं।
1: तुम नहीं, तुम अभी आए हो, रुको। रशीद, तुम भी जितना जल्द मुमकिन हो खुद को तलाइया तक पहुंचा दो और हर्ब के हमरा उसका नज्म बरकरार करो, और ये तुम्हारी तलाइया पर सालारी का हुक्मनामा है। हम जल्दी ही तुमसे मिलेंगे।
2: अशी
3: जी सरदार।
1: तुम्हारा हमने इसलिए इंतखाब किया है कि माविया के जिंदान बान थे, साहिब जाहो मनसब थे, और अगर जालिमों की मदद करना चाहते तो हमारे दरमियान न होते। लेकिन उस शैतान से होशियार रहना जो हजार रंग बदलता है और हीले बहाने से इंसान को फरेब देता है। हमारी आबरू तुम्हारे और हर्ब की मुखावेमत में है।
2: घबराइए मत सरदार, जिस दिन मैंने अली मुर्तजा के साथ दिल लगाया, दुनिया से दिल उठा लिया, और अब वही वादा उनके बेटे के साथ किया है। मेरी सिर्फ लाश मानवीय की छावनी पहुंच सकती है।
1: मुतमईन हूं सलामती के साथ।
2: खुदा हाफिज।
1: इब्ने अब्बास, एक सवाल ने मेरी फिक्र मशगूल कर दी है। क्यों हसन इब्ने अली के इतने सरदारों में से किंदी नामी मौजूद को तलाइया का सरदार बनाया गया? वो सिफीन और नहरवान में हमारे साथ था। अली ये मुर्तजा के हमरकाब तलवार चलाई, उसकी शुजात और दिलेरी में शक नहीं था। उसका अकीदा कैसा था? कुछ खुदराए था, सरदारी का ख्वाहिशमंद, लेकिन जाहिरन मोमिन मुत्तकी लग रहा था। सिर्फ लग रहा था? हाँ, लग रहा था। फिर तुम मुतमईन नहीं थे? नहीं, मैं मुतमईन नहीं था। मैं कैसे मुतमईन रह सकता हूं? मैं कौन हूं? मैं गैब जानता हूं, जो बातिन जानू। क्या तुम्हारा बातिन जानता हूं? तुम्हारा क्या बातिन है कैस सईद? तुम्हारा बातिन मैं कैसे जानू? हुजर इब्ने हातम, तुम में से कौन एक दूसरे के बातिन से आगाह है? हम तो खुद अपने आप से मुतमईन नहीं है, बस खुदा जानता है मुझ पे क्या गुजर रही है। हम समझ रहे थे कि वह एक मुत्तकी और परहेजगार इंसान है, लेकिन क्या मालूम कि शैतान ने उसके दिल में घर कर लिया। इब्ने अब्बास, मुसलसल हमारे खेमे का पर्दा उठता है और हमारे लोग अंदर आकर मुझसे पूछते हैं कि आखिर इस छावनी में हो क्या रहा है,
2: सिपाह में क्या हो रहा है
4: और तलाइया में क्या हो रहा है।
1: पूछते हैं कि क्या तलाइया का सरदार माविया से मिल गया है।
2: हम कहते हैं इब्ने अब्बास का कहना है कि ये अफवाह है।
4: लोग पूछते हैं कि तलाइया का जवान क्या खबर लाया है।
1: अल्लाह, हमारा सब्र खत्म हो गया है। जवान, तलाइया की क्या खबर है? जवान, मेरा नाम शिमरजील जोशन है। तुम्हारा बाप मुझे अच्छी तरह जानता है, बल्कि सब अरब मुझे जानते हैं। सुनो, जब मुझ जैसा सरदार तुमसे कुछ पूछे तो फौरन उसका जवाब दो, वरना मुमकिन है कि तुम अपनी जान गंवा दो। मैं तुमसे दोबारा पूछता हूँ कि

0: दी फरार हो गया।
1: हाँ,
0: माविया के लश्कर से पनाह ले ली।
1: हाँ,
2: क्या यह सच है कि तराइया में अब कोई नहीं रहा?
0: झूठ है,
3: रावल दस्ते से भी कोई फरार नहीं हुआ।
0: चंद अफराद फरार हो गए। कितने अफराद?
1: अब तक मालूम नहीं हुआ है।
0: अब तक मालूम नहीं हुआ है। कहता है अब तक मालूम नहीं हुआ। बिसरे साथ बताओ सिर्फ कितने लोग बाकी बचे।
1: इब्न ज़िलजोशन, बताओ तुम्हारा मकसद क्या है और तुम चाहते क्या हो?
0: मेरा मकसद रोशन है। क्या मेरा मकसद रोशन नहीं? लोग हमसे पूछते हैं कि ये कैसी जंग है जिसके सरदार दुश्मन से जा मिलते।
2: पूछते हैं कि क्यों ऐसे लोगों को फौज की सरदारी के लिए मुंतखब किया गया।
3: पूछते हैं क्यों हम अपनी जाने ऐसे सरदारों के हुक्म पर जाया करें।
0: और सबसे मुहिमतर ये पूछते हैं कि क्या जमानत है कि अबा मोहम्मद के बाकी सरदार खयानत नहीं करेंगे। ए, बस करो, अपनी बहादुरी मैदान जंग में दिखाओ। बिसरे साथ, मैं हमेशा चाहता हूं कि मेरा हाथ तलवार के कब्जे पर न पड़े। अगर गिलाफ से बाहर आ गई तो खून पिए बगैर वापस नहीं जाएगी। इब्न ज़िलजोशन, तलवारें देखी हैं जो गिलाफ से बाहर आई और वापस नहीं गई, बेसाहब रह गई। मेरी नहीं थी, अभी नहीं, कभी नहीं, अभी नहीं। चलो

0: Hayana Tufan. Amr, mere khayal mein agar is had se ek kadam tumne us taraf rakha, to ye tufan tumhe seedhe jahannam pahuncha dega.
1: Mumkin hai, lekin main mukammal taur pe mutmain hoon ke jahannam ka darwaza Amir ke bagair nahi khulega. हाँ मुगैरा, क्या खबर है?
2: अमीर मुझे बोलने की इजाजत दें।
1: तुम कब से अमीर से बात करने के लिए इजाजत मांगने लगे हो? तुम तो हमेशा इतना बोलते हो कि आखिर में अमीर को कहना पड़ता है कि बस करो।
2: लेकिन अभी अमीर के लिए खुशखबरी आई है।
0: यकीन नहीं करूंगा, गरचे छुपाऊंगा भी नहीं। हाँ, अगर तुम कहो कि तुम्हारे जासूसों की गर्दनें उड़ाई हैं, तो मेरे लिए बाइस मसरत होगी।
2: लेकिन अमीर, अगर मेरी लाई हुई इस खबर को सुन लें, तो मुझे यकीन है कि मेरी पिछली सभी खताओं को बख्श देंगे।
0: मुगैरा, बताओ खबर क्या है? मुझे परेशान कर डाला। अब मुझ पे कौन सी आफत ढाई है? क्या लश्कर का कत्लेआम हो गया? क्या कोई आसमानी बला नाजिल हो गई? या सिपाहियों में ताऊन फैल गया? मैं मुतमइन हूं कि इस खबर के सुनने के बाद हम सबको सोग मनाना पड़ जाएगा।
2: हमारे जासूसों ने हसन इब्न अली के लश्कर के सरदार किंदी को फरेब दे दिया है, और इस वक्त वो हमारी फौज में है अमीरुल मोमिनीन के रहम करम पर।

0: अगर अगर ये खबर झूठी निकली तो अल्लाह अपने हाथों से तेरा सर तन से जुदा करूंगा।
1: अमीर, अगर ये खबर गलत है तो मैं खुद अपनी गर्दन को शमशीर अमीर के हवाले कर दूंगा।

0: आम्र, तुम्हारा क्या ख्याल है?
1: हाँ, इसमें शक नहीं कि आबा मोहम्मद को बड़ी शदीद ज़र्ब आई है, लेकिन अभी काम तमाम नहीं हुआ है। मगर उसके तलाइया के सरदार को धोखा देना एक ऐसा हसीन हुस्न है जो हमारा रास्ता वाज़ेह करता है।
0: हमारा हदफ वाज़ेह था कि हसन के दोस्तों को बहकाना और कमजोर करना, और आखिर में हसन इब्ने अली को सुलह पे मजबूर करना।
1: पहले भी तुमसे एक बार कहा था कि उसके लिए सुलह की उम्मीद दिमाग से निकाल दो। वो ऐसा नहीं है कि तुम्हारे साथ बैठकर मजाकरा करे, सुलह के वास्ते आमादा हो जाए, अहदनामे पर नज़रसानी करे, तुम्हारी खिलाफत को कबूल करे और इमामत से दस्तबरदार हो जाए।
0: तो हमें क्या करना चाहिए?
1: तो फिर सुनो, अब हमारी पूरी कोशिश ये होनी चाहिए कि उनके साथियों को उसके अतराफ से मुंतशिर कर दें, उनकी ताकत को कमज़ोर कर दें, उन्हें बेयार और मददगार छोड़ दें। लेकिन हम तलवार हाथ में नहीं उठाएंगे, हम उनके मुकाबले सफ आरा नहीं होंगे, हम जंग नहीं करेंगे,

0: और हमेशा सुलह का नारा लगाएंगे और मुसलमानों के खून की हिफाजत का दम भरते रहेंगे और ख़ुद को बैत रसूलुल्लाह और उनके फ़र्जंदों की हुरमत का पासदार जाहिर करके यकीन दिलाएंगे। लेकिन बिला शक कभी भी अबा मोहम्मद सुलह के वास्ते तैयार ना होंगे। यही सबब होगा कि वो मुसलमानों की निगाह में ज़िद्दी, कीना परवरी, जंग तलबी में मशहूर हो जाएगा और वो तुम्हारी दावत मोहब्बत को कबूल न करके जाह तलबी पर महमूल होगा। ऐसे मौके पर अगर कत्ल भी हो जाए तो इसके वजूद से तुम्हारी खिलाफत को कोई ख़तरा नहीं होगा।
1: ये मक्कारियां तूने कैसे सीखी?
0: यकीन करो मेरे दोस्त, मैं इन अफकार व ख्यालात को हासिल नहीं करता, बल्कि ये वो अफकार हैं जो मुझे मुसख़र कर चुके हैं। गो के ये हज़ारों साल से मेरे साथ हैं और अब अल्फाज की सूरत में मेरी ज़बान से अदा हो रहे हैं।
1: समझ रहा हूँ, जिस तरह कि मैं खिलाफत के पीछे नहीं भागता बल्कि ये खिलाफत खुद ही मेरे वजूद को मुसक्कर किए हुए है और मुझे सुकून लेने नहीं देती,

0: सलाम मालिक।
1: थोड़ा सा खाना ले आओ, हाथ धोने के लिए कुछ पानी भी ले आना।
0: जी अच्छा।
1: हाँ अशअस इब्न उमैर,
2: हम बहुत देर से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे, कहाँ थे?
1: अमीर का हुक्म बजा ला रहे थे।
3: ऐसी खबर लाया हूँ जो 10 थैली सोने के सिक्कों के बराबर है।
1: तुम खरीदार हो तो मैं एक थैली में बेच सकता हूँ। किंदी भाग गया है और मुआविया से जाके मिल गया है।
4: ये खबर कहाँ से लाए हो?
1: 6 थैलियों में हमने खरीद लिया। इस खबर का चर्चा तो पूरे कूफे में है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? नुखैला क्यों नहीं गए?
4: किंदी के फरार का बहाना करके हम नुखैला से निकल आए ताकि बैठ के कुछ मशवरा करें।
1: वही करना है जो पहले तय था।
3: मुमकिन है कि हालात तेजी के साथ बदल जाएं और सब कुछ अबू सुफियान के बेटे के हक में हो जाए।
0: अब हालात बदल गए हैं, किंदी के भागने ने हर चीज बदल दी है।
4: हमें हमारी जिम्मेदारी का पता चलना चाहिए।
1: हम तो पहले ही तुमसे अमीर की जानिब से वादा कर चुके हैं।
0: तुम्हारा वादा काफी नहीं, खुद अमीर वादा करे और जमानत दे।
4: यही कि हमारी मिल्कियत पे निगाहें हिर्स हवस न डाले और हमारे लिए नाम मुयन करे।
1: कैसा है नाम? तुमने तो अभी कोई कदम भी नहीं उठाया।
3: यह कदम जो हमने अब तक नहीं उठाया है, कदम ना उठाने का ही तो तुमसे इनाम मांग रहे हैं।
4: वरना हम नुकैला लौट जाएंगे और ऐसा जंग का नारा लगाएंगे कि हिंदा कब्र में तड़प उठेगी।
1: इम्र अपनी जबान को लगाम दो, हम पहले ही बात तय कर चुके हैं। एक कासिद को हमने अमीर की तरफ भेजा है जिसके जवाब का इंतजार करना चाहिए।
3: अमीर का जवाब इब्ने अब्बास के लश्कर के नुखैला छोड़ने से पहले पहुंच जाना चाहिए ताकि हम सबका वजीफा मुकर्रर हो सके।
1: हाँ कोई कयामत तो नहीं आई है जो तुम इतना परेशान हो रहे हो? किंदी फरार कर गया है और कोई खास बात तो नहीं है? अबा मोहम्मद मदायन में फौज जमा कर रहे हैं। इब्ने अब्बास और सईद जंगी तरबियत में मसरूफ हैं। कैस व हजर व अदी मुस्तकिल मुख्तलिफ कबीलों से मिल रहे हैं और उन्हें जंग के लिए उभार रहे हैं, और तुम लोग घबराए हुए यहाँ आए हो और अपने अंजाम का पूछ रहे हो?
4: हम पे नुकता चीनी ना करो, क्या तुम्हें अपने अंजाम की फिक्र नहीं?
1: हम सब का अंजाम अमीर की सखावत पर मुनहसिर है, घबराओ नहीं। आओ बैठकर सोचते हैं कि इस वक्त क्या करना चाहिए। जरा ये तो बताओ, अब जबकि तुमने नुखैला को छोड़ दिया है तो छावनी की खबरें कौन हम तक पहुंचाएगा?
0: घबराओ मत, हमारे लोग हैं वहां पर, हमें सारी खबरें मिलती रहेंगी।
1: ये बिल्कुल ठीक है, नुखैला हमारे जेर नजर है लेकिन मदायन से बेखबर है और नहीं मालूम कि अबा मोहम्मद क्या कर रहे हैं।
4: हमारी तरफ से मदायन में भी कोई है जो मदायन के हालात से हमें आगाह करता है।
1: कौन है वो?
4: अशस। उसकी बेटी अबा मोहम्मद के घर में है।

0: अब माविया को हमारी खिदमतों की कदरदानी करनी चाहिए। क्या खबर? कुछ
1: कूफियों ने अपने चेहरे छुपा लिए हैं, अब वो हमसे मुलहक नहीं होना चाहते।
0: इब्ने अब्बास, हमें इसी ग्रोह पर कनात करना चाहिए। हाँ, इन्हीं लोगों के साथ अबू सुफियान के बेटे के जवाब में निकलेंगे। अब हम मोहम्मद का इंतजार कर लेते हैं, वो कूफे वालों को बेहतर समझते हैं।
2: मुझे कूफे वालों से कुछ पूछना है।
0: हे सुरक्षा, जाओ तुम लोग भी जाओ, जाओ जाओ हारिस, तुम भी जाओ।

0: चलो चलो भाइयों, चलो मस्जिद, चलो लोगों मस्जिद, चलो जवानों मस्जिद, चलो। बड़ी अहम खबर है भाइयों, बड़ी अहम खबर है। तुम्हें जानना चाहिए कि मस्जिद में क्या बात होगी। जल्दी करो, मस्जिद पहुंचो।
1: क्या बात होगी? होगी नहीं पता।
0: जवानों मस्जिद चलो, बड़ी अहम खबर है भाइयों, बड़ी अहम खबर है।
2: चलो मस्जिद चलो, वहाँ बहुत अहम खबर है। भाई साहब आप भी आइए, चलिए मस्जिद चलिए, सब लोग मस्जिद में हैं।
1: मस्जिद में चलिए, सब लोग मस्जिद में हैं। भाई साहब आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मस्जिद में चलिए, चलिए चलिए, तशरीफ लाइए,
0: बड़ी अहम खबर है,
1: आ जाइए।
2: सब आपका इंतजार में हैं।
1: आप वहाँ क्यों खड़े हैं? मस्जिद में चलिए, चलिए ना,
2: जल्दी आइए मस्जिद की तरफ, चलिए
1: जल्दी करो।
3: क्या हुआ?
1: अपने चांदी उठाओ, निकलो।
3: क्यों भाई, क्या बात है?
1: नहीं जानते जंग के लिए सबको खैला ले जा रहे हैं।
4: जंग भाई सब कोई जंग नहीं होनी, जाके अपना कारोबार करो, हमें भी अपना कारोबार करने दो। जाओ जाओ।
0: बड़ी अहम खबर है,
2: क्या आप मस्जिद नहीं आएंगे?
0: तुम्हें जानना चाहिए कि मस्जिद में क्या बात होगी। जल्दी करो, मस्जिद पहुंचो।
5: खुदा की कसम, तुम्हारे जैसे बुजदिल और काहिल लोग जमीन के किसी तबके में भी नहीं पाए जाते। नबती बदवी और शिमाली सहरा के कबीले और कबीलों के साथ नारे लगाते हुए कूफे की तरफ बढ़ रहे हैं, और तुम हो के हर बात से बेखबर लापरवाही में पड़े हो। खूंखार दुश्मन तुम्हारी तरफ तेजी से बढ़ रहा है, जो लाशों के ढेर लगा देगा, तुम्हारे घरों को उजाड़ देगा, और तुम्हें इसकी परवाह भी नहीं। वो तुम्हारे मर्दों को कत्ल कर देगा, तुम्हारी औरतों को कनीजे मना लेगा। खुदा के लिए अब तो होश में आ जाओ, इससे ज्यादा जहालत का सबूत न दो।
6: मुझसे जहाद की तवक्को रखते हो? मेरा जहाद का जमाना गुजर चुका है भाई। जब मैं ताकतवर था तब लड़ा, खुदा के लिए तलवार चलाई, मुसलमानों के साथ मिलके काफिरों के खिलाफ जंग की। अब जंग जिदाल का वक्त गुजर चुका है, नमाज और तौबा का वक्त।
5: तुम लोग हसन इब्न अली के साथ वही कर रहे हो जो उनके बाबा अली के साथ किया था। कभी कहते हो कि काश्तकारी का जमाना है, कभी हरे भरे खेतों का बहाना करते हो, फिर गल्ला काटने का और बाजार में बेचने का वक्त आ गया, और जब सर्दियां आती हैं तो ठंडक का बहाना होता है। अमीरुल मोमिनीन नुकैला में बैठकर तुम लोगों की बुजदिली का शिकवा कुएं से कर रहे थे। ऐ मर्दों से शबाहत रखने वालों, मैं भी तुमसे वही कह रहा हूं जो अली कह रहे थे। काश कि मैंने तुम्हें नहीं देखा होता और न पहचाना होता।
1: आरिस, मुझे अपने हाल पे छोड़ दो, और ये जो चंद दिन मेरी जिंदगी के रह गए हैं, नमाज और रोजे में गुजारने दो। मैं खुदा की बारगाह में हसन इब्न अली की कामयाबी की दुआ करूंगा।
5: कूफे वालों, दुश्मन खुदा तुम्हारे शहर के दरवाजे तक पहुंच चुका है, अपने शकियात को दूर कर लो। फर्जंद पैगंबर तुम्हारी इज्जत और नामूस के दिफा के लिए दुश्मन कुरान से सीना सिपर हुए हैं, और तुम पीछे हट रहे हो। उठा लो अपने हथियारों को, ये खामोशी का वक्त नहीं है। हिम्मत से काम लो, सिर्फ खुदा से मदद मांगो।
6: मैंने रसूल खुदा को अपनी आंखों से देखा है, उनके पहलू में तलवार चलाई, और चंद खलीफों की खिलाफत के दौरे के बाद दीगर गुजारे हैं। ईरान मैंने फतह किया, रुस्तम फरखजाद की फौज को मैंने शिकस्त दी है। अब मैंने कुछ वक्त बचाया है कि फिक्र करूं, गम आलम ने हमारे पूरे वजूद को घेर लिया है। एहसास करता हूं कि अपनी उम्र बिला वजह इन नाशुक्रे लोगों के लिए गवा दिए। लोगों ने मेरे लिए क्या किया? दूसरों को खिलाफत हवाले नहीं की? क्या मैं उन लोगों से कम था? लिबास खिलाफत क्या मेरे जिस्म के लायक नहीं थी? मोहलत दो के गोशे तन्हाई में इस फितने से दूर रहूं। इब्न अब्बास अपनी फौज लेकर मस्कन आ रहे हैं, और हम भी उनके साथ जा मिलेंगे कि अपने वजीफे पर अमल करें, और हमारे इमाम के फरमान पर या कत्ल करेंगे या शहीद हो जाएंगे। बकौल मोहम्मद मुस्तफ़ा, इसी में हमारी नजात और कामयाबी है, और ये काम मोमिनीन का है।
5: لیکن وائے ہو تم پر کہ تم نے بیعت کی تو تھی لیکن اسے توڑ بھی ڈالا ہے۔ وائے ہو تم پر کہ تم نے اپنے دل کی آواز بھی نہیں سنی۔ وائے ہو تم پر کہ اپنی آخرت کو بزدلی کے بدلے میں بیچ ڈالا۔ وائے ہو تم پر کہ یہی نبتی اور شامی لوگ بہت جلد تمہارے ان بد اعمالیوں کے بدلے میں اپنے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیں گے، اور یہ چند روزہ دنیا جو تم نے اپنی آخرت کے بدلے میں خریدی ہے یہ تمہیں کبھی راس نہ آئے گی، اور تم دنیا اور آخرت دونوں سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ خسرت دنیا والآخرہ۔ والسلام۔
2: ہم جنگ کے لیے بالکل تیار ہیں، ہم سب کے سب آمادہ ہیں، ہم سب کے سب تیار ہیں۔ ہم ذلت برداشت نہیں کر سکتے، ہم رسوائی برداشت نہیں کر سکتے، ہم تیار ہیں،
7: ہم تیار ہیں، ہم حسن ابن علی کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں، ہم جنگ کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم ذلت برداشت نہیں کریں گے، ہم دشمن کو نیست و نابود تباہ و برباد کر دیں گے، ہم حسن ابن علی کے ساتھ ہیں، ہم اللہ کے رسول کے بیٹے کا ساتھ دیں گے، امیر المومنین کے بیٹے کا ساتھ دیں گے، ہم تیار ہیں، ہم حسن ابن علی کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں، ہم جنگ کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم ذلت برداشت نہیں کریں گے، ہم دشمن کو نیست و نابود تباہ و برباد کر دیں گے، ہم حسن ابن علی کے ساتھ ہیں، ہم اللہ کے رسول کے بیٹے کا ساتھ دیں گے، امیر المومنین کے بیٹے کا ساتھ دیں گے۔
0: سلام بیٹی۔
8: سلام پدر۔ تم لوگ تو مسجد جا رہے تھے؟
0: نہیں، قیس کی باتیں میرے لیے نئی نہیں ہیں، میں جانتا ہوں کہ وہ کیا کہتا ہے اور کیا چاہتا ہے۔
8: اچھی بات کہی، مجمع کو اتنا جوش دلا دیا کہ اکثر لوگ جنگ پہ جانے کے لیے تیار ہو گئے۔
0: ہاں، لوگوں کو تو جنگ کی دعوت دیتا ہے، خود معاویہ سے مل رہا ہے۔ تمہیں پتا تو ہوگا کہ طلائیہ کے سردار کندی نے کیا کیا۔
8: ہاں جانتی ہوں۔
0: وہ جو علی ابن ابی طالب کے باوفا ساتھیوں میں سے تھا ایسا کر گیا تو قیس و سعید و حجر و عدی کیا معلوم کہ وہ کیا کریں گے۔ مطمئن ہوں کہ ابا محمد کو تنہا چھوڑ کر معاویہ سے جا ملیں گے۔
8: پدر، کیوں ابا محمد کے باوفا ساتھیوں کے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہو؟
0: باوفا؟ مطمئن رہو کہ کندی سے زیادہ وفادار نہیں ہے۔ تم سمجھتی ہو کہ ابا محمد کو طلائیہ میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کی خبر ہے؟
8: نہیں جانتی۔
0: تم کیا سمجھتی ہو، کیا جانتی ہو کہ کوفہ و نخیلہ میں کیا ہو رہا ہے؟
8: شاید انہوں نے کہا ہو کہ تم نخیلہ کو چھوڑ کر کوفے آ گئے ہو۔
0: اپنے باپ کو تانا دیتی ہو؟ ہم نے نخیلہ اس لیے چھوڑا ہے کہ حسن ابن علی کو خبر دیں کہ وہ سپاہیوں کے حال کی فکر کریں۔ سنو بیٹی، حسن ابن علی میرا داماد ہے اور میری بیٹی کا شوہر ہے۔ جو کچھ میرے اور علی ابن ابی طالب کے درمیان تھا وہ ختم ہو چکا۔ جنگ نہروان، ابن ملزم، سب کچھ ختم ہو گیا۔ اب بات دوسری ہے۔

0: अगर खिलाफत हसन इब्न अली को मिल जाए तो तू मेरी बेटी है जो इज्जत शौकत एहतराम की मलिका बन जाएगी। क्या कोई बाप ऐसा भी है जो अपनी बेटी के लिए नेकबख्ती के अलावा कुछ और भी सोच सकता?
1: मैं क्या बताऊं पितर?
0: क्या तुम्हें अपने बाप पर इत्मीनान है?
1: खुदा हाफिज।
0: जोदा, अपने कान और आंखें खुली रखो। कुछ खाइन और नमक हराम अबा मोहम्मद के इर्द गिर्द जमा हैं और चाहते हैं कि इन्हें सफ़े हस्ती से मिटा दें। क्या तुमने नहीं देखा कैसे उनकी जान का कस किया था और चाह रहे थे कि इल्ज़ाम मेरी गर्दन पर आए, और जब कामयाब न हुए तो मारने वाले को फौरन ही मार डाला ताकि हकीकत किसी पर न खुल सके। मैं मुतमईन हूं कि यह काम माविया के जासूसों का भी नहीं था।
1: तो फिर किसका काम था?
0: ये उन्हीं का काम है जो मीठी मीठी बातें करते हैं और अबा मोहम्मद की बयात का दम भरते हैं, लेकिन खुफिया तौर पर उनके दुश्मन के साथ मिले हुए हैं। बेटी जोदा,
1: अंदर ना आना। खुदा हाफिज।
0: आओ बेटी, मैं जो कुछ भी कहूं उस पर अमल करो। जो खबर भी आए मुझे फौरी तौर पर आगाह करो। जो भी कासिद आए और पैगाम लाए उसकी इत्तला भी मुझे फौरन दो। समझ रही हो बेटी मैं क्या कह रहा हूं? मुझ पे भरोसा रखो। यकीन करो तुम्हारे शौहर की जिंदगी यानी मेरे दामाद की जिंदगी महफूज नहीं है। चौकन्ना रहो, हम और तुम एक दूसरे की मदद से हसन इब्न अली को खतरों से बचा सकते हैं ताकि उनकी खिलाफत को महफूज रख सकें। ये दुनिया और आखरत की नेकी है और हम इसी को अपना मुकद्दर बनाएं। इस खतरनाक अमर की अंजामदेही में तुम मेरी मदद करो। जो भी खबर यहाँ आए मुझे फौरन खबर करो। जो कासिद भी आए बिला फासला मुझे बताओ और अपने बाप पर भरोसा करो।

रुको शेमर, तुम कुछ ज्यादा घबराए हुए हो। अमीर मुआविया इब्ने अबी सुफियान तुम्हारे तसव्वुर से ज्यादा चालाक हैं। क्या तुम्हें पता है कि इब्ने अब्बास ने जिन फौजों को जमा किया है उसमें कितने दमिश्क के जासूस और गारतगर मौजूद हैं? वो इतने ज्यादा हैं कि अगर अमीर का हुक्म होता तो एक ही रात में तुम और तुम्हारे दोस्तों का सर खेमो ही में काट सकते थे। शेमर, मुझे यकीन नहीं आता कि जो शोर शराबा कैस ने किया है उससे उसको कोई फायदा पहुंचे।

0: Machine. Don't.
1: ये क्या?
2: सिक्के। इसी तरीके से किंदी को धोखा दिया। इसी तरह की थैली उसके खेमे में लटकी देखी। नहीं, ये निशानी है। अगर धागा तोड़ के तुमने थैली उठा ली तो इसका मतलब है तुमने मामला कबूल कर लिया है।

0: यार मुझे अकेला छोड़ दो।
1: क्या करना चाहते हो?
0: नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता। जाओ।
1: तुम्हें यकीन है नहीं चाहते मैं यहां रहूं?
0: हाँ, जाओ। चाहता हूं कि अकेला रहूं।

0: वाह मोहम्मद,
1: तलाया का सरदार कुछ देर पहले किसी आदमी के साथ छावनी छोड़कर फरार हो गया है।
2: किस रास्ते से गया है?
3: पहाड़ियों की तरफ से।

0: आ जाओ आ जाओ, अरे आ जाओ और देखिए क्या होता है।
1: ये मर्द जासूस है, कल रात इसने मेरे खेमे में एक सिक्कों की थैली लटकाई और चाहता था कि मुझे भी किंदी की तरीके से दुनिया के माल के वादे पर पिसरे हिंद के सुपुर्द कर दे, और मेरी भी शर्त ये थी कि मैं सिर्फ पिसरे हिंद के लश्कर के सिपाह सालार से बातचीत करूंगा, और वो भी अकेला। उसके बाद उस टीले के पीछे इस मर्द साद इब्ने आसिम से मुलाकात की, और इस मर्द को जो आप देख रहे हैं ये मेरे और पिसरे हिंद के मामले का नतीजा है।
2: मार दो इसे, मार देना चाहिए, इसे कत्ल कर दो।
1: सुनो सुनो, ठहरो, जल्दी ना करो, इसको आजाद कर दो, इसको जाने दो, ताकि ये जाकर के हमशियों का पैगाम मुआविया तक पहुंचा दे। हर्ब, इसको खोल दो। ए रुक जाओ, मुआविया से कहना फर्जंद रसूल खुदा का सौदा उसके भेजे हुए सिक्कों से नहीं करेंगे, और कहना हम आखिरी सांस तक लड़ेंगे, और अब उसके और हमारे दरमियान ये तलवार ही फैसला करेगी। अब जाओ, ये जासूस है, और जासूस की सजा जंग के दौरान सिर्फ और सिर्फ मौत है। इसको ले जाओ और छावनी के बाहर जाकर इसकी गर्दन उड़ा दो। ले जाओ इसे।
3: मैंने कुछ नहीं किया, मैं बेगुनाह हूं, मैंने कुछ नहीं किया, मैं बेगुनाह हूं।
4: रशीद मेरे भाई, मुझे माफ कर दो। सरदार मुझे माफ कर दो, मैं समझता था अब तुम्हें नहीं देख पाऊंगा।

0: जिससे उम्मते मुस्लिमा वाबस्ता थी। लेकिन हम देखते हैं कि उस वक्त जो वाली मदीना था, गवर्नर जो था मदीने का, वो ये चाहता था कि मदीने के वो लोग के जो बड़े हैं, बुज़ुर्ग हैं, साहबी रसूल हैं और ख़ास मुंतखब अफराद हैं, वो ख़ुद वहाँ शाम जाएं, यजीद को देखें करीब से, उसके दरबार को देखें और पूरी हुकूमत को देखें और वहाँ से मुतासिर होकर आएं
1: वापस
0: और मदीने वालों को बताएं आकर के यजीद कितना नेक आदमी है, उसकी हुकूमत कितनी
1: अच्छी
0: उम्दा
1: है, हाँ, सपोर्ट करो आकर के
0: और फिर वो तायीद करें आकर। लेकिन हम देखते हैं कि वो वफद, वो डेलीगेशन के जो अब्दुल्ला इब्ने हंजला की क़यादत में गया था, वो जब वापस आता है तो वो उसके बिल्कुल बरअक्स तस्वीर पेश करता है। यहाँ पर आकर यजीद की वो तस्वीर पेश करता है कि जो हकीकी तस्वीर है,
1: यानी उनके अगराज व मकासद के बिल्कुल बरखिलाफ आके रिपोर्ट देते हैं कि भाई जो जिस मकसद से इन लोगों ने बुलाया है,
2: इन्होंने तो भेजा था कि जाओ आकर के तस्बीह पढ़ना, यजीद का कलमा पढ़ना, यहाँ लोगों को उसका हामी बनाना। अब ये लौट करके आए, इन्होंने देखा कि ये तो बंदर तो खेल रहा है, शराब पी रहा है, दीन का मजाक उड़ा रहा है, कुरान की तोहीन कर रहा है, हर चीज को मजाक और मसखरा खेल बना रखा है। तो इन्होंने कहा कि ये आदमी असल बैठने लायक नहीं है तख्त खिलाफत के ऊपर, किसका खलीफा हो किसका खलीफा तो बात है, असल तख्त पे बैठने लायक नहीं, हाकिम नहीं बन सकता ये इंसान। तो अब यहीं से फिर शुरू हुआ है वो मदीने में एक क़याम जिसे वाकई हर्रा
1: कहते हैं।
0: जी वाकई हर्रा उसी क़याम के बाद पेश आता है। अब्दुल्ला इब्ने हंजला की क़यादत में जो क़याम आता है तो उसकी वजह से लोगों की मुखालफत और यजीद की मुखालफत लोगों के अंदर उभरना शुरू होती है। और फिर जब वो देखते हैं कि भाई लोग हमारे ख़िलाफ़ हो रहे हैं, हम जो चाहते थे कि इन्हें करीब करें अपन और ये हमारी तारीफ़ें करें, लेकिन वाकई उसके बरक्स होता है। तो फिर यजीद अपने एक गालिबन कमांडर को अब्दुल्ला इब्ने उकबा को भेजता है कि उस कयाम को जाकर पूरी तरह से मिसबार करे, पूरी तरह से
1: मुस्लिम इब्ने
0: उकबा, मुस्लिम इब्ने उकबा
1: जी, जिसे मुसरिफ इब्ने उकबा भी कहा गया।
0: मुसरिफ
1: इतना वो उसने कत्ल गारत गरी फैलाई कि उसे मुस्लिम ने मुसरिफ इब्ने उकबा कहा गया कि इसने कत्ल में इसराफ किया है।
2: मलऊन की उम्र भी बहुत ज्यादा थी उस वक्त, वाकई हर्रा के जमाने में 90 साल का बूढ़ा था ये, लेकिन उतना ही ज्यादा जालिम शकी और बर्बरियत
1: इंसान था। अब ये शख्स मुस्लिम इब्ने उकबा जो है, बात निकल आई तो अर्ज कर दूं, ये शख्स आता है मदीने में फौज लेकर और हालात आपको मालूम है कि वाकई हर्रा कैसा वाकया था मदीने वालों के लिए, नहायत ही मजालिम के पहाड़ तोड़े गए और न जाने कितने हज़ार लोगों को कत्ल किया गया, न जाने कितने लोग जो हैं औरतें बेवा हुई, बच्चों को दूध पीते बच्चों को पैरों से पकड़ के घुमा के दीवार पर मार दिया इसने, मुस्लिम नौबान और इसकी फौज ने। बच्चों को उछाला जाता था, नीचे नैजा लगा देते थे, बच्चा के नैजे पे पड़ता था, यानी जुल्म बर्बरियत की इंतहा। जाहिर है कि जो लोग
2: अल्लाह की मरकद को अस्तबल में तब्दील
1: किया गया
2: वहां पे उस्तवान जो रोजे रसूल में सुतून है, पिलर्स हैं जिनकी अपनी अजमत है, आमाल है, इबादतें वहां के लिए, उस पे जानवर बांधे गए ला करके उन सुतून से।
1: बड़े बड़े सहाबी रसूल को उनके गर्दनों पे यजीद की गुलामी की मोहर लगा दी गई, यानी वाकई हर्रा ऐसा कोई आम वाकया नहीं है, ये सब कुछ हुआ। लेकिन इस वाकये में इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम और बाज़ दीगर यानी अहले बैत इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ये महफूज रहे, क्योंकि इन्होंने इस क़याम में साथ नहीं दिया। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने इस क़याम में बिल्कुल शरीक नहीं हुए। वो
0: वजह उसकी
2: यही पे एक मिनट खाते कलाम, एक बात और, यह इमाम अलैहिस्सलाम का घर सिर्फ उनके लिए पनाहगाह नहीं था बल्कि बहुत सारे 400 खानवादे अपने, इन 400 खानवादों में खुद मरवान के बीवी बच्चे
1: जी,
2: ये वही शख्स है जिसे आप कह सकते हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत उनके कत्ल का सबब बना एक तरह से।
1: जी
2: आज हमारे लिए दर्स का मकाम है इमाम की ये सीरत, हमारे साथ अगर कोई हमें तिरछी आंख करके देख लेता है तो हम उसे कत कलाम हो जाते हैं, हम उसके साथ हर तरह की नेकी कार्य खैर अच्छे से मिलना सब भूल जाते हैं, साहब सलामत हम बंद कर लेते हैं। दरवाजे पर आया है कौन, बाप का कातिल, क्या कह रहा है कि आप हमारे बीवी बच्चों को पनाह दे दीजिए, वरना जो सबके साथ हो रहा है वही इनके साथ भी होगा, और ये मुझे मालूम है कि यहाँ पे अगर रहेंगे ये लोग तो महफूज रहेंगे। इमाम कह सकते

0: अगर हमारे जैसा आदमी होता तो पलट के कह देता, तुमने तो हमारे साथ कौन सी नेकी किया है, हमारा घर बर्बाद हुआ है तुम्हारी वजह से, सब कत्ल कर दिए गए तुम्हारी वजह से।
1: जी, तो
0: लेकिन
1: यहाँ
0: इन्होंने
1: पर
0: सल्लल्लाहु
1: वहाँ
0: अलैहि वसल्लम
1: की
0: कितने
1: खामोशी की वजह क्या थी?
0: वसी जर्फ का इजहार किया।
2: जी, खामोशी की वजह ये थी कि सबसे पहली बात ये कि इमाम अभी कर्बला से वापस हुए, तमाम असहाब व अंसार अहले बैत अलैहिस्सलाम शहीद हो गए हैं। बिल्कुल मौका, कंडीशंस, शरायत हालात ऐसे नहीं हैं कि किसी तरह का क़याम किया जाए, क्योंकि इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम खुद फरमाते हैं क़याम किसकी बुनियाद पर किया था, अंसार और यावर होते हैं, मददगार होते हैं तब क़याम करते हैं ना। हमारे तमाम इमाम अलैहिस्सलाम जो क़याम नहीं कर सके, उनका शिकवा यही था कि हमारे पास असहाब व अंसार नहीं है। इमाम सज्जाद कहते हैं कि पूरे मक्के और मदीने में इस वक्त 20 लोग नहीं है जो हमसे मोहब्बत करते हो, शिया नहीं, 20 लोग नहीं है जो हमसे मोहब्बत करते हैं। इसीलिए हदीस में आया है कि इरतद दन्नास बादल हुसैन इल्ला सलासा, अबू खालिद अल काबली, जुबैर इब्न मुतअम और यही इब्न मुतवील। कह रहे हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद लोग मुर्तद हो गए थे, मुर्तद हो गए थे।
1: जी, अलबत्ता यहाँ पर शायद मुर्तद
2: जी मैं
1: का जो मतलब
2: जी
1: है।
2: मैं माना बताऊंगा, मुर्तद हो गए थे सिवाय 3 लोगों के मसलन, फिर उन 3 लोगों के जो मैंने नाम पेश किया, बाज हदीस में 5 लोग हैं।
0: बाज में
2: मुर्तद
0: सात
2: होने
0: भी हैं।
2: जी मुर्तद होने का मतलब ये नहीं है कि दीन से फिर गए, नहीं, वो तौहीद पर कायम थे, रिसालत पर कायम थे। बहुत से लोग ऐसे थे जो हजरत अली को भी खलीफा मानते थे,
1: इबादत
2: शैखैन
1: कर
2: की
1: रहे थे,
2: खिलाफत
1: नमाजें
2: के
1: पढ़
2: भी,
1: रहे थे, सब कुछ कर रहे थे।
2: जी सब कुछ, उसूल व फुरू अपनी जगह थे, लेकिन
0: रूह
2: इमाम कह
0: है,
2: रहे हैं
0: रूह है इस्लाम नहीं थी इनके
2: जी,
0: अंदर।
2: इमाम कह रहे हैं कि ये क्या है, मुर्तद है। मुर्तद क्यों है? इस लिहाज से है कि इन्होंने इमाम का साथ छोड़ दिया है, यानी जहां पर इमाम की नुसरत करनी चाहिए वहां पर इमाम की नुसरत नहीं कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि लिसान हदीस में, लिसान मासूमीन में मुर्तद सिर्फ वो नहीं होता है जो तौहीद और रिसालत का
0: बेशक
2: इनकार करे, बल्कि वो भी हो सकता है जो अपने वक्त के इमाम की नुसरत ना करे। तो वक्त के इमाम की नुसरत करना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसका हमें ख्याल रखना चाहिए। यानी हम खुद देखें कि इस वक्त जो इमाम वक्त हैं, इमाम ज़माना अज्जलल्लाह ताला फ़रजहु शरीफ, उनके हम नासिर व मददगार हैं या नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि अभी अगर इमाम आके हमारे माशरे का एक जायज़ा लें तो आके यही नतीजा दें कि इरतद नास, सब मुर्तद हो गए सिवाय कुछ लोगों के, ऐसा तो नहीं है। यानी हमें एक बहुत ही दकीक जायज़ा, बहुत ही गायराना नज़र से देखना होगा कि हमारा माशरा किस सिमत में जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो ये कहता हूँ कि हमारा माशरा बेहतरी की तरफ
1: काफी बेहतर
2: गामजन
1: है।
2: है, लोग दीन की तरफ आ रहे हैं, लोगों में तशनगी दीन की पाई जा रही है, लोगों में इमाम ज़माना की याद पहले से कहीं ज़्यादा हुई है। जवान खुसूसन हमारे इस वक्त जो हैं वो दीन की तरफ बहुत अच्छी तरह राग़िब हैं। यानी आप आज से 25 साल पहले का अरसा देखें, 20-25 साल पहले का अरसा देखें, तो मस्जिद जवानों से खाली होती थी, अभी मस्जिदें आबाद हैं, आज़ादारियों में जवान बढ़ के हिस्सा लेते हैं, जो दीनी क्लासेस लगती हैं उसमें जवान बढ़ के हिस्सा लेते हैं। तो ये सब खुशायंद बातें हैं, इसको और ज़्यादा बेहतरी की तरफ ले जाने की ज़रूरत है और इसमें उम्क पैदा करने की ज़रूरत है। ऐसा ना हो कि सिर्फ सतही काम हो रहे हों और हम उससे खुश हों, नहीं, उसमें उम्क पैदा करने की।
0: आपकी बातों से
2: जी
0: एक
2: हाँ, वो सवाल रह गया, असल
0: हाँ
2: सवाल।
0: सर, एक मिनट रुक जाइए, आपकी बात से एक बात याद आ गई है, उसी से कनेक्टेड है। अलबत्ता इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम के ज़माने को जब हम देखते हैं, वो हालात लोगों के कैसे हैं, तो बाज़ मुअर्रिखीन ने लिखा है कि उस ज़माने के हालात इतने ख़राब हो चुके थे कि लोग, इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम का ज़माना है, लोग बाज़ ऐसे थे जिन्हें नमाज पढ़ने नहीं आता था। हत्ता वलीद इब्ने अब्दुल मलिक, इसके ज़माने में उमर इब्ने अब्दुल अज़ीज़, ये रईसुल हाज बनता है, जाता है हज के लिए मदीने से मक्के, और इसको वकूफ़ का पता नहीं था, गलत सलत इसने रोज़े ईद क़ुरबान गलत वकूफ़ अंजाम दिया। ये वो लोग हैं जो अपने आप को ठेकेदार समझते थे, लेकिन नमाज इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम के ज़माने में, जिस नमाज के लिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने क़ुरबानी पेश किया, कितना फ़ासला है, कुछ भी फ़ासला नहीं है, लेकिन उस वक्त में लोगों को नमाज़ पढ़ने नहीं आता, नहीं पढ़ते थे। एक वक्त यह है कि आदमी जानता है नहीं पढ़ता है, ये तो सहलंगारी है। एक वक्त यह कि जानते ही नहीं कि नमाज़ कैसे पढ़ी जाती है। अब आइए हमारे ज़माने में, हमारा ज़माना इमाम ज़माना, वक्त हमारे वक्त का इमाम है ना, अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारे जवान, अभी आपने कहा है, मस्जिदें भरी हुई हैं। लेकिन फिर भी यहीं से एक पैगाम अपने भाइयों को कि अगर कोई ऐसा है जो गाफिल है, जानते हैं हमारे सारे बिरादरान, सारे जवान हमारे जानते हैं पढ़ना, लेकिन गाफिल है, किसी दूसरे काम को ज़्यादा
2: तरजीह दे रहा
0: तरजीह
2: है
0: दे रहा है,
1: जी।
0: दूसरी चीज़ों को ज़्यादा अहमियत दे रहा है, नमाज को अगर हल्का सुबुक समझ रहा है, تو وہ اس لائن سے اپنے آپ کو نکال کر کے اس لائن میں آ جائے کہ وہ حقیقت

0: सलाम और इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम के लिए मैदान हमवार कर रहा है। यानी ये 4000 शागिर्द आपके बकौल ये इमाम फराहम कर रहे हैं, इस तरह से मुहिब्बान अहले बैत की तादाद में इजाफा कर रहे हैं। मुसलसल ये इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने काम किया है, मेहरबानी के साथ पेश आए और तादाद में शियों के इजाफा हुआ, मुहिब्बान अहले बैत की तादाद देखने को मिली बाद में।
1: आज़ाद भी जो करते थे उसकी टाइमिंग पीरियड्स बड़े अच्छे हुआ करते थे, माह मुबारक के रमज़ान में, यानी ईद के रमज़ान के बाद ईद उल फितर में आज़ाद कर रहे हैं, हज के ज़माने में आज़ाद कर रहे हैं कि जाओ देखो मुख्तलिफ इलाकों में दूर दराज़ भेजा करते थे।
2: मेरे ख्याल से अब हम गुफ्तगू को समेटते हैं
0: जी,
2: यहाँ तक जो गुफ्तगू हमने की है इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम की जिंदगी

0: हुए खुद एक एक पहलू पर अगर हम गुफ्तगू करें तो कम से कम एक पॉडकास्ट एक एक पहलू पे चाहिए, मसलन उनका उनकी इबादत के सिलसिले में, उनकी शागिर्द परवरी के सिलसिले में, उनकी सकाफती और तहजीबी सरगर्मियों के सिलसिले में, इल्मी सरगर्मियों के, अभी तो उनके इल्म पर हमने रोशनी नहीं डाली, उनकी फिकी रिवायात जो मौजूद है उस पर रोशनी नहीं डाली,
1: इमाम की जो इनफरादी खसूसियात
0: हैं, इनफरादी खसूसियात हैं, हाँ अखलाकियात उनके, उनके जोहद इबादत तकवा सखावत जुदो सखा, और फिर वो वाकयात मेहरबानी और अतुफत के वाकयात, बेपना अफवो दरगुजर, बहुत सारे वाकयात हैं, सब कुछ रह जाता है, लेकिन बहरहाल वो आम तौर से गुफ्तगू हो जाती है, लेकिन इस पहलू से जो इमाम की मुजाहिदाना सीरत है और मुकाबले वाली जो इनहराफात और कजी से जुल्म का मुकाबला, ये वाली जो सीरत है, ये पहलू थोड़ा सा मेरे ख्याल में शायद कम बयान होता है हमारे माशरे में, जिस पर गुफ्तगू की ज़रूरत थी, जो कि थोड़ा सा हम लोगों ने कुछ गुफ्तगू की, लेकिन बहरहाल गुंजाइश हमेशा बाकी रहती है।
2: खुदावंद आलम हमें भी और हमारे तमाम जवानों को तौफीक दे कि वो अहमे अथार बिलखसूस मसलन इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम की सीरत को प्रैक्टिकली अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करें और उसकी बरकत को अपनी आँखों से अपनी इसी दुनिया में, इसी दुनियावी ज़िंदगी में मुशाहिदा करें
1: इंशाल्लाह।
0: इंशाल्लाह मेरे ख्याल में वक्त तमाम होता है, तमाम आप दोनों उलमा का हम शुक्रिया अदा करते हैं, और उम्मीद है कि फिर इस पॉडकास्ट में किसी और पॉडकास्ट में किसी और मौजू के साथ हाजिर होंगे। नाज़रीन उम्मीद करते हैं कि ये पॉडकास्ट आप लोगों के लिए मुफीद रही होगी। अय्याम अज़ा में अज़ादारी के वक्त जब आँखों से अश्क जारी हों, इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम के मसाइब सुनकर जब आपका दिल मगमूम हो और आँखें महज़ून हों, तो हमें भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और मख़सूसन हमारे माशरे के लिए, इस्लामी माशरे के लिए, इस्लाम मुस्लिमीन की सरबुलंदी के लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा, और इमाम के ज़हूर के लिए भी ज़रूर दुआ कीजिएगा। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।